हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि तदनुसार 16 जून 2026 सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रिभोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति

पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 500,000 आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही

0: उठाया और स्पेन को गोल करके करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सुप्रभात। वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को डिम्पी का नमस्कार। आज मंगलवार है, आइए मंगलवार के इस शुभ दिन में मंगल कामनाओं के साथ में भक्तिमय संगीत का कार्यक्रम वंदना आरंभ करते हैं हवेली संगीत के साथ में।

भगवान शिव के रुद्रावतार, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, बजरंग बली, वीर हनुमान जी को कलयुग का देवता माना गया है। उनकी महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम ही होता है।

ग्रंथ कहते हैं कि भगवान हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था। भगवान सूर्य जो स्थिर नहीं होकर निरंतर गतिशील रहते हैं, ऐसे में हनुमान जी ने उनकी गति के साथ चलते हुए ही उनसे ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने भगवान सूर्य से शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया तो सूर्य भगवान ने कहा कि वे हमेशा रथ पर सवार रहते हैं और उनके ठहरने से सृष्टि का विनाश हो सकता है, इसीलिए हनुमान जी किसी और को गुरु बनाएं। इस पर हनुमान जी ने ठाना कि भगवान सूर्य की गति के साथ साथ चलकर ही वे शिक्षा ग्रहण करेंगे।

कार्य पूर्ण होने तक नहीं रुकने की सीख देते हैं वीर हनुमान। सुंदर कांड में समुद्र लांग रहे हनुमान जी को आराम देने के लिए समुद्र ने मेनाक पर्वत से आग्रह किया कि वे हनुमान जी के विश्राम के लिए तनिक ऊपर उठ जाएं और उन्हें विश्राम प्रदान करें, लेकिन हनुमान जी ने ये कहकर मेनाक पर्वत को भी लौटा दिया कि जब तक श्री राम का कार्य नहीं हो जाता तब तक वे विश्राम नहीं करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने हमारी दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 6:40 का समय रहेगा श्री राम चरित मानस गान का, और 6:50 पर आप सुन पाएंगे खेती में आज कार्यक्रम। सदाबहार नगमों का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7:00। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे सुबह 7:45 पर, सुबह 11:30 पर और रात्रि 9:15 पर। नमस्कार उदयपुर, ये कार्यक्रम आप हमारे दोनों ही चैनल मीडियम वेव और एफएम रेडियो लेक सिटी पर सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं सुबह 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 10:00, दिन में 12:00, दोपहर 1:45 पर, रात्रि 8:00 और रात्रि 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा सुबह 11:00। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी आप सुन सकते हैं दिन में 1:05 पर। कृषि जगत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर।

किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर आप सुन पाएंगे शाम 7 बजे, जिसमें होगी चौपाल की बात, साथ ही कुछ राजस्थानी लोकगीत।

ये आप सुन रहे थे हमारे दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। लीजिए सुने श्री रामचरित मानस का संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम सुनवा वाला सकला किसान भाया ने नीता कोठारी रो राम राम सा। किसान भाया आज बात करंगा अणि महीना अपने खेती बाड़ी रा कसा कसा काम करना है। सागवाजी री खेती जी किसान भाई करनो चाहे वे भिंडी री फसल देखो कणी भी मिट्टी में उगाई जा सके वत्ता उत्पादन रे वास्ते जल निकास और जीवाश्म युक्त 6 और 6.8 pH मान वाली दोमट मिट्टी जो है वह सर्वोत्तम रहे। भिंडी री फसल में अगर अप्रैल महीने में बामणी कर दी दी है किसान भाया तो भिंडी री तुड़ाई जून महीने करनी है और तापमान वत्ता व्यवहार कारण पानत प्रबंध रा विशेष ध्यान अपने रखना है। जून रे महीने बरसाती भिंडी री फसल री बुआई रो उपयुक्त टेम है। और भिंडी री प्रजातियाँ री बात करा तो पूसा ग्रीन भिंडी 5, पूसा A4, पूसा सावनी, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, परभणी क्रांति, आजाद भिंडी, अर्का अनामिका, VRO 5 और VRO 6, IIVR 10, ये सब जो है खास उन्नत किस्म है। अगर अनारो चयन करोगा तो फसल उत्पादन होवेगा। बीज दर और पोषक तत्व प्रबंधन की बात करा तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र रे वास्ते भिंडी में 8 से 10 किलोग्राम बीज 40x30 सेंटीमीटर री दूरी पे वावनी करनी है। और अंडे वास्ते देखो खेतरी तैयारी रो टेम 25 से 30 टन सड़ी तकी गोबर री खाद या 10 टन नाडेप कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर दरों खेत में मिलाई लीजो सा। भिंडी फसल में वावणी रे टेम पे 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दरों उपयोग कर लेनो चाहे। भिंडी री फसल में तुड़ाई रे केड़े यूरिया 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ री दर नाकनो है और अंडे केड़े जो है पाणत कर देनी है। पौध संरक्षण री बात करा तो तापमान ने ध्यान में रखता तका माइट जेसिड और होपर री निरंतर निगरानी करता रहनो है। अणि मौसम में भिंडी री फसल में हल्की पाणत कम अंतराल पे करता रहनो है। खरपतवार रे वास्ते वावणी 30 से 60 दिना रे दौरान कुल 2-3 निराई गुड़ाई पर्याप्त वेगा। जटे खरपतवार री वत्ती समस्या वे किसान भाया वटे खरपतवार ना फ्लुक्लोरिन 1.5 से 2 लीटर ने 500 से 600 लीटर पानी में घोल ने प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में वावणी रे पहला छिड़काव कर लीजो। लोबियारी खेती रे वास्ते गरम और आर्द्र जलवायु हाउ रेवे किसान भाया तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस रे बच्चे ठीक रहेगा। वत्ती ठंडा मौसम में पौधारी बढ़तवार रुक जावे। सब तरह री मिट्टी में अंडी खेती कर सका। मिट्टी रो पीएच मान 5.5 से 6.5 उचित रहे। जमीन में जल निकास रो उचित प्रबंधन मेणो चावे और वर्षा रे मौसम रे वास्ते अंडी वावणी जून रे अंत और जुलाई में कर सका। किसान भाया लोबिया री वावणी रे वास्ते जून रो महीनो हाउ टेम है। लोबिया री प्रजाति पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, अर्का, गरिमा, काशी गोरी और काशी कंचन ये सब उन्नत किस्म है। अनारो चयन आपा कर सका। बीज दर और पोषक तत्व प्रबंधन री बात करा तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में वावणी करवा रे वास्ते 15 से 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त वेगा। लोबिया री बोनी प्रजातिया री वावणी 45x15 सेंटीमीटर और फेलवा वाली जो प्रजातियां है अंडी वावणी 75x25 सेंटीमीटर री दूरी पे करनी चाहे। लोबिया री हाउ फसल लेवा रे वास्ते प्रति हेक्टेयर 15 टन सड़ी तकी गोबर री खाद या पचे 8 टन नाडेप कंपोस्ट खाद रे लारे वावणी रे टेम पे 40 किलोग्राम नाइट्रो 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दरों उपयोग कर ले।

कद्दू वर्गीय शाकभाजी की बात करा तो आल तरोई करेला टिंडा कद्दू खीरा ककड़ी तरबूज खरबूजा और पेठारी वावणी रो अबाणु हाउटे में आल री पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग पूसा नवीन तोरई री पूसा चिकनी पूसा नसदार पंजाब सदाबहार सतपुरिया करेला री उन्नत किस्मारी बात करा तो पूसा दो मौसमी पूसा विशेष कोयमटूर लॉन्ग कल्याणपुर बारहमासी टिंडारी बात करा तो कल्याणपुर लुधियाना सलेक्शन हिसार सलेक्शन एक पंजाब टिंडा ई हाउ किस्मा है कद्दूरी प्रजाति की बात करा तो पूसा विश्वास पूसा विकास पूसा हाइब्रिड एक और खीरारी पूसा उदय पूसा बरखा पॉइंट सेट कल्याणपुर जापानीज लॉन्ग ग्रीन और पेठारी बात करा तो पूसा उज्जवल पूसा उर्मी DAGH 16 जिने केवा पूसा श्रेयाली DAGH 14 जिने केवा ई सब जो है खास प्रजातियां है। आल और तरोई में 4-5 किलोग्राम टिंडा रे वास्ते 5-6 किलोग्राम काशी फल और खीरा 3-4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहेगा। किसान भाया कद्दू वर्गीय साग बाजारी उन्नत प्रजातियां रे वास्ते 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास कद्दू वर्गीय जो संकर प्रजातियां हैं अनारे वास्ते 100 किलोग्राम नाइट्रोजन 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दरों उपयोग कर लेनो चाहे। अणी मौसम में बेल वाली जो फसलें वन में न्यूनतम नमी बनाए रखनी है नीतर मिट्टी में कम नमी व्यवहार के कारण पुष्पन और परागण पर असर वे सके अणी देखो फसल उत्पादन में कमी आई सके और तापमान बता रहवारी आशंका ने देखता तका किसान भैया तैयार जो सब्जियां बनारी तुरई सुबह सांझ के टाइम पे आपा कर सका या तो सुबह टाइम पे करो या पचे हांजरी टाइम पे और छायादान जगह पे अना ने राखनी है। फूल गोभी री अगेती फसल रे वास्ते हाउ जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी हाउ रहेगा खेत री तैयारी हाउ तरीकों जुताई करने पाटो चलाई ने कर लेनी चाहे ढाई बाई एक मीटर री 7 क्यारिया में लगभग 200 ग्राम बीज बोई जा सके और क्यारिया जो है 15 सेंटीमीटर ऊंची बनानी चाहे। किसान भाया क्यारिया में लगभग 8 सेंटीमीटर ऊपरी सतह पे गोबर री जो सड़ी तकी खाद है वह पर्याप्त मात्रा में मिलानो जरूरी है। खाद मिला वारे केड़े क्यारी ने समतल कर लेनो चाहे और बीज जो है ढाई यू 5 सेंटीमीटर री पंक्तियां में बोनो चाहे। अगेती फूल गोभी री पौध तैयार करवारे वास्ते पौधशाला री तैयारी करने पछे बीज री वावणी आपणे करनी है। वावणी रे पहला 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या पछे 2 ग्राम थीरम या पछे केप्टोन प्रति किलोग्राम री दरुं बीज ने उपचारित कर लेनो है। अगेती फसल रे वास्ते कतारू कतार री दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधम पौधा री दूरी 45 सेंटीमीटर वेणी चावे। अगेती फूल गोभी री प्रजाति री बात करा तो पूसा दीपाली पूसा कार्तिक शंकर पूसा सिंथेटिक पूसा मेघना पूसा अर्ली पंत गोभी 2 पंत गोभी 3 अर्ली पटना अर्ली कुमारी सेल 327 और सेल 328 ये सब जो है खास प्रजातियां हैं अनारो चयन आपा कर सका। फूल गोभी री अच्छी फसल लेवारे वास्ते प्रति हेक्टेयर 300 क्विंटल गोबर री खाद ने रोपाई रे पहली खेत में नाक देनो है हाउ तरीका मिलाई देनो चावे और उर्वरक रे रूप में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास री जरूरत वेगा। दोमट मिट्टी में अगेती किस्मा में 5-6 दिनारे अंतर पे पाणत पौध रोपण रे तुरंत बात कर लेनो जरूरी है। मर्चारी खेती मैदानी क्षेत्र में वर्षा रे मौसम में खेती कर सका बीज अंकुरण रे वास्ते 16-20 डिग्री सेल्सियस पौधारी बढ़तवा रे वास्ते 21-27 डिग्री सेल्सियस और फल विकास री परिपक्वता रे वास्ते 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हाउ रहेगा। खरीफ मौसम में वावणी रो टेम जून जुलाई वे वैसा। मर्चा ने वास्ते 1000-1200 ग्राम बीज री मात्रा पर्याप्त रहेगा। अगेती मर्चा री पोत तैयार करवा रे वास्ते पोषशाला री तैयार करिया तका जी बीज हो भी आपणे वावणी करना चाहे। वावणी रे पहला 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या पछे 2 ग्राम थीरम या केप्टन प्रति किलोग्राम री दर बीज ने उपचारित कर लेनो है। हरी मर्चा री प्रजाति पूसा ज्वाला पूसा सदाबहार NP 46 ए पंत C1 ई सब जो है हाउ रहेगा। अदरक और हल्दी री फसल में जरूरत अनुसार पाणत करनी है और 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर दरों उपयोग कर लेनो है। तो अणी तरह किसान भाया साग भाजी री खेती अगर कर रहा हो तो ई सब काम कर लोगा तो आपकी मेहनत जो है वह बेकार नहीं जाएगा फसल उत्पादन भी हाउ वेगा और मुनाफो भी वत्तो मिल सकेगा। अब माने कार्यक्रम टाइम वेगियो तो चाला सा राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती में आज। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुने सदाबहार नगमे। पहली पेशकश गाइड फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर।

0: ये गीत था फिल्म आ गले लग जा से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। सदाबहार नगमों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी की उदयपुर केंद्र से। अगली पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम सीता और गीता।
1: अरे अरे ए,

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: दादी हाँ? आपके नाम।
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
7: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया।
8: बन गया बजट।
7: हाँ
8: 5,000 बच गए।
9: तो नई साड़ी ले ले।
8: ना पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और
8: नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़िया जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: कह दूं तुम्हें
4: हाँ
10: या चुप रहूं
4: ना
10: दिल में मेरे आज क्या है
4: क्या है।

किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना दीवार फिल्म से ये गीत सदाबहार नगमों की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म का नाम अमर प्रेम।

0: ये प्रोग्राम बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने आबोहवा।
1: प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। SIDS और जलवायु परिवर्तन। यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों में सोख लिया।

0: इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वनुआतू जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे आबोहवा, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए सुने सुगम संगीत, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में गाई ये गजल।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

0: में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप

से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला यह पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम या इसका प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से यह होर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में

0: শূন্যে সহিষ্ণুতার নীতি কি।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का

0: चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged.

0: शब्दों की महक से सजता है हर पल का सफर, शब्दों की महक से सजता है हर पल का सफर। रेडियो की दुनिया में जुड़िए हमारे साथ हर पहर। मुस्कान जानकारी और मनोरंजन का खजाना है तैयार। आज आपके साथ है आरजे विद्या और मेरे साथ
1: ज्योति।
0: अपने दिन को बनाइए शानदार। वेलकम इन ट्यूजडे प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। लिसनर्स, हमारे कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूजडे में डे ब्रेकर यानी दिन की शुरुआत में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस पर। उसके साथ ही हम देंगे जानकारी T20 विश्व कप अपडेट और फीफा वर्ल्ड कप अपडेट। सोशल पल्स में हम जिक्र करेंगे स्वयं सेवा की संस्कृति पर।
1: तो जानकारी, जागरूकता, खेल और समाज के बारे में आज हम बातें करेंगे। अवेयरनेस में हमारा आज का विषय रहेगा विकसित भारत और सरकार के 12 वर्षों के सफर के बारे में जानेंगे। वेल्थ हेल्थ के बारे में जानेंगे और वेदर के बारे में जानेंगे और इसमें विषय रहेगा बढ़ते तापमान का मानव स्वास्थ्य पर असर।

कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे में आप सभी का मोस्ट वेलकम। जब कोई व्यक्ति रोजगार या काम के लिए अपने घर या देश से दूर जाकर कमाई करता है ज्योति, तो अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेजता है और उसे पारिवारिक पेंशन कहा जाता है। ये आर्थिक सहायता

0: परिवारों के लिए जीवन यापन का आधार होती है। डे ब्रेकर्स में आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस पर। यह दिवस उन लाखों प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में मनाया जाता है जो अपने परिवार की खातिर दूर रहकर भी अपने परिवार को आर्थिक योगदान देते हैं। यह धनराशि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास और छोटे व्यवसायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त ये एक वैश्विक दिवस है जो 200 मिलियन से अधिक प्रवासी श्रमिकों के योगदान को और उनके द्वारा अपने परिवारों को भेजे जाने वाले पैसों के महत्व को सम्मानित करता है। विद्या, और इस वर्ष की थीम है ग्रामीण लचीलापन, उद्यमिता और रोजगार। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, जो आपने बताया कि ये परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करना, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ गरीबी कम करने और आजीविका को बेहतर बनाने में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक सहारा मिलता है परिवार को, उसके अलावा ग्रामीण विकास भी होता है। एक बड़ा हिस्सा जो पैसे का ग्रामीण इलाकों में पहुँचता है वो स्थानीय स्तर पर उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा करता है। और तीसरा, इस बात का प्रभाव ये पड़ता है कि विकास लक्ष्य, ये प्रेषण उन्मूलन और आर्थिक समानता जैसे संयुक्त राष्ट्र के कई जो मिशन हैं उन्हें प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सम्मानित करते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं उन मेहनतकश लोगों का धन्यवाद करते हैं जो घर से दूर रहकर भी अपने परिवार की खुशियों से जुड़े रहते हैं। उनकी भेजी हुई राशि से न सिर्फ घर का बजट संभलता है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की उम्मीदें भी मजबूत होती हैं।

0: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, और अब खेल जगत की ओर जुड़ते हैं। ज्योति, जानते हैं 15 जून को खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल। दिन का जो मुकाबला स्पेन और कैप वर्डे के बीच खेला गया वो रोमांचक लेकिन गोल रहित रहा। दोनों टीमें पूरे समय संघर्ष करती रही लेकिन मैच 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दूसरे मुकाबले में बेल्जियम और मिश्र आमने सामने थे, यह मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। मिश्र की ओर से इमाम अशूर ने गोल किया जबकि बेल्जियम को बराबरी का गोल मिश्र के डिफेंडर के आत्मघाती गोल की बदौलत मिला। इसके बाद सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया और मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ।
1: तो फीफा वर्ल्ड कप बड़ा खास है इस बार, है ना। जैसे कि हम सब जानते हैं विद्या, 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 3 मेजबान हैं अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। गोलों की गूंज, रिकॉर्ड्स का रोमांच और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का जादू, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जैसे अपने अपडेट्स बताई, जर्मनी ने हरा दिया 7-1 से कुराकाओ को, जापान ने नीदरलैंड को ड्रॉ किया नीदरलैंड के साथ मैच में, स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से हराया। ये स्टेज जो अभी शुरुआती मुकाबले हो रहे हैं उन्हीं में कल मुकाबला हुआ मियामी की भीषण गर्मी में सऊदी अरब के खिलाफ उरुग्वे का, और दबदबा रहा उरुग्वे का, 1-1 से मैच वो भी ड्रॉ रहा। सबसे बड़ा उलटफेर तो वो हुआ विद्या, जो स्पेन को नवागंतुक कैप वर्डे ने हरा दी, मतलब एक ड्रॉ पर रोक दिया। एक बड़ी चेंजेस इस मैच में शुरुआत में हुई। ईरान और न्यूजीलैंड के बीच आज सुबह मुकाबला हुआ, उसमें ईरान इनमें ज़्यादा एक तरह से दमदार टीम के रूप में थी और न्यूजीलैंड 85वें स्थान पर है, तो उसके बावजूद ये मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। आज के अगर मैचों की बात करें तो आज भी कई सारे मैचेस होने हैं, इनमें इसके सारे मुकाबले जो होंगे उनमें देर रात तक और कल सुबह होने वाले मैच हैं। तो इन मैचेस में हैं, ग्रुप आई में फ्रांस और सेनेगल के बीच न्यू जर्सी में मुकाबला होगा, ग्रुप आई में ही इराक और नॉर्वे के बीच मुकाबला होगा आज दिन भर के मुकाबलों में, और देर रात को होने वाले मैचेस हैं ग्रुप जे के अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच है, और दूसरा मैच है ऑस्ट्रिया और जॉर्डन के बीच।
0: और अब जिक्र करें महिला T20 वर्ल्ड कप अपडेट्स की, तो सबसे चर्चित मुकाबले में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर टूर्नामेंट में शानदार जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 रन बनाए, जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। भारतीय टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 68 रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि 15 जून के मैचों में किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया लेकिन स्मृति की अर्धशतकीय पारी दिन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी रही। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया। और श्रोताओं, भारतीय महिला टीम के नाम रहा ये दिन जहां बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया और गेंदबाजों ने पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह दबाव में ला दिया। महिला T20 विश्व कप का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले मुकाबलों में और भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।
1: बिल्कुल विद्या, महिला क्रिकेट टीम की बहुत सारी सराहना बनती है, उनके लिए बहुत सारी हम शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। और बात करते हैं श्रीलंका ए के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज जो चल रही है, उसमें सोमवार को हुए मुकाबले में जो अच्छा सा मैच देखने को मिला, मैच टाई हुआ और उसके बाद सुपर ओवर का सहारा लिया गया जिसमें श्रीलंका ए ने बिना कोई विकेट गंवाए 16 रन बनाए, भारतीय टीम ने 10 रन बनाए, और इस तरह ये मुकाबला भारतीय टीम ने गंवा दिया। अगला मैच 17 जून को अफगानिस्तान से है भारत का, तो उस मैच में भारत को जीतना होगा।

0: और बात करें ज्योति, कुछ खास खबरें हमारे उदयपुर में क्या कुछ खास रहा कल, बात करते हैं। शहर में सोमवार को तापमान में गिरावट आई, ठंडी हवाओं के चलते गर्मी का एहसास थोड़ा कम हुआ, लेकिन हाँ अभी ज्योति उमस जो है वो बरकरार है और सभी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उदयपुर में अगले 4-5 दिनों तक मौसम बिना किसी बड़े बदलाव के यथावत बना रहेगा। शहर में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन प्री मानसून के पूरी तरह दस्तक देने से पहले स्थानीय निवासियों को उमस वाली भारी गर्मी का सामना करना पड़ेगा।
1: तापमान में भी एक तरह से कह सकते हैं कि कोई अभी राहत नहीं है। फिलहाल आगामी 4 दिनों तक लगभग मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते कुछ स्थानों पर जैसे प्रदेश में कई जगह पर आंधी तूफान और बारिश भी चल रहे हैं। मौसम से बचाव करिए अपना और स्वस्थ रहिए। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं विद्या। तो ये है कि राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में श्रेणीवार रिक्त रही सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सीटों पर ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख है 21 जून 2026। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ई मित्र या स्वयं की SSO ID से लॉगिन कर कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के पोर्टल या ऐप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है मॉनसून से जुड़ी हुई कि मॉनसून के दौरान बच्चों को दस्त रोग से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉप डायरिया अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये 31 जुलाई तक चलेगा और इसका उद्देश्य है 5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त से होने वाली बीमारियों और मृत्यु दर को कम करना। इसके तहत कई सारे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को ORS कॉर्नर स्थापित किए गए हैं, जहाँ पर लोगों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से ये बनाया जाता है और इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है और साथ साथ वितरण भी होगा।
0: बिल्कुल, और ज्योति हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें कि आज उदयपुर में किन किन क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सिसारमा मेन रोड, नयाखेड़ा बस स्टैंड, पुराना नाई बस स्टैंड, पीपलवास, छोटी उंदरी, बड़ी उंदरी और संबंधित क्षेत्र में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जहां बिजली बंद रहेगी वो क्षेत्र है डाकन कोटड़ा, ढोल की पार्टी, 6 लाइन रोड के पास और संबंधित क्षेत्र। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नाकोड़ा नगर, रघुकुल विहार, शिवधारा, जनकपुरी, मोती प्लाजा, होटल फिनिक्स, फन कंसल्टेंसी, ग्रीन पर्ल, नाकोड़ा पुरम, सौभाग्य नगर, माउंट व्यू, 100 फीट प्लानिंग, यहां भी बिजली बंद रहेगी। नवरत्न कॉम्प्लेक्स, ज्ञानगढ़, रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट, ओएसिस टॉवर, मंगलम रोज देवरों की मगरी, तेलीवाड़ा, भुआणा, गवरी चौक, भैरूजी वाली गली, फ्रेंड्स अपार्टमेंट सर्विस सेंटर के पास, पद्मावती अपार्टमेंट, संस्कार 2, देवीनगर, श्रीनाथ हॉस्पिटल, एवरेस्ट आशियाना, यहाँ पर भी सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
1: और शहर में हल्दीघाटी युद्ध की 450वीं वर्षगांठ के और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का दौर जारी है। सोमवार को गांधी ग्राउंड में 3 दिवसीय हल्दीघाटी युद्ध विजय चित्र प्रदर्शनी का आगाज हुआ, जिसमें मेवाड़ की बलिदानी परंपरा को दर्शाया गया है। आमजन को ये प्रदर्शनी जरूर देखनी चाहिए। साथ ही हल्दीघाटी विजय पर बनाई गई लघु फिल्म के पोस्टर का विमोचन भी कल किया गया। और आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की पूर्व संध्या पर शाम 5:15 पर प्रताप गौरव केंद्र में 57 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की जो बैठक प्रतिमा है उसका दुग्धाभिषेक किया जाएगा। और आयोजनों के तहत विभिन्न आयोजन शहर में और इसके आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों होंगे। तो इन आयोजनों के तहत वाहनों की पार्किंग को लेकर, यातायात को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आप चलने से पहले इसके बारे में अपडेट्स लेकर चलें। और एक और प्रोग्राम होगा जगदीश चौक में शौर्य दिवस के रूप में।

आज समारोह का आयोजन होगा। महाराणा प्रताप के विशाल चित्र की 486 दीयों से महा आरती की जाएगी और भारत माता का पूजन भी होगा। जगदीश मंदिर हजारों दीयों की रोशनी से जगमगाएगा। तो महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर बुधवार सुबह 7 बजे फतेह मेमोरियल पर महाराणा प्रताप, महाराणा फतेह सिंह और महाराणा भोपाल सिंह जी की प्रतिमाओं का अभिषेक, आरती, पुष्प वर्षा की जाएगी और प्रसाद भोग लगाया जाएगा। नमन करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को।

0: उदयपुर राइट्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। ज्योति, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है और बदले में किसी आर्थिक लाभ या सम्मान की इच्छा ना रखता हो तो उसे स्वयं सेवा कहा जाता है। और आज हम सोशल पल्स में बात करेंगे स्वयं सेवा की संस्कृति पर। आइए जानें क्या है स्वयं सेवा। सबसे पहले इसका बताएं अर्थ। बिना किसी व्यक्तिगत लाभ पुरस्कार की अपेक्षा के स्वेच्छा से समाज, समुदाय या जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए समय, श्रम, ज्ञान या संसाधनों का योगदान देवा स्वयं सेवा में ही आता है। यह सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत, रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और सामाजिक जागरूकता या किसी भी तरीके से आप अपनी सेवा दे सकते हैं। हमारे भारत देश में समाज सेवा की परंपरा सदियों पुरानी है। हर जगह स्वयं सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तब हम एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं।
1: जी विद्या, नर सेवा नारायण सेवा की भावना हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना सिर्फ काम नहीं होता, ये एक संस्कार है। अब दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, डिजिटली हम एक दूसरे से जुड़े हैं पर सामाजिक रूप से दूरी बढ़ रही है, तो स्वयं सेवा की संस्कृति हमें एक दूसरे से जोड़ती है और बताती है कि समाज की मजबूती केवल सरकारों या संस्थाओं से नहीं होती बल्कि आम लोगों की भागीदारी से होती है। सोचिए, हर महीने कुछ घंटे समाज के लिए दे दें तो कितने बच्चों को शिक्षा मिल सकेगी, कितने सारे पौधे लगाए जा सकेंगे, कितने लोगों तक मदद पहुँच सकती है। और कुछ भी नहीं तो किसी बुजुर्ग के साथ कुछ समय बिताना, उनकी बातें सुनना कितनी बड़ी बदलाव ले आता है। ये निस्वार्थ भाव से जो हम काम करते हैं वो एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि

0: हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में सामुदायिक रसोई का चलन हमेशा से रहा है और महात्मा गांधी के सर्वोदय और आत्मनिर्भरता के विचारों ने आधुनिक भारत में स्वयं सेवा को नई दिशा भी दी है।
1: बिल्कुल, और ज्योति, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे न केवल समाज को फायदा होता है बल्कि स्वयं का व्यक्तित्व भी निखरता है। हमारे स्वयं के अंदर आत्मविश्वास, टीम भावना और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास होता है। हम सभी संकल्प लें कि अपने समय का कुछ हिस्सा समाज सेवा के लिए अवश्य निकालें।

यह है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। कार्यक्रम रहेगा जारी, लेकिन इस समय सुबह के 9 बजने को हैं। अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से, बस कुछ ही देर में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ

0: सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। श्री मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य नवाचार और विश्वास, जिम्मेदारी तथा मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये पहल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को नए सिरे से परिभाषित करती है और इससे युवाओं को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की व्यावहारिक जानकारी मिलती है। मंत्रालय ने कहा है कि विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा जन आंदोलन है जिसको लेकर भारत के युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में आयोजित शिविर में पट्टा, लीज, भवन निर्माण स्वीकृति और नामांतरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि शिविर के पहले दिन 327 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
2: जो हमारे एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही हैं, जो हमारे पास अपने CCC सर्विसेज के ऊपर ऑनलाइन हैं, उन लोगों को हम मैसेज भेज रहे हैं कि जिनकी एप्लीकेशन लास्ट स्टेज पे है उनको जैसे आज हमने बुला रखा है और जिनमें अभी थोड़े से काम है उनको जब नेक्स्ट कैंप लगेगा उनका तो बुलाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग जो हमारे 6000 से ज्यादा CCC पे पेंडेंसी चल रही थी वो सारी पेंडेंसी को हम इस कैंप में खत्म करेंगे। इसके साथ साथ जो नई एप्लीकेशन आएंगी उनको भी इस कैंप में टेकअप करके खत्म करेंगे।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर की लाभार्थी सुनीता अग्रवाल ने आवासीय पट्टा मिलने पर खुशी जाहिर की है और सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: मैं सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली हूँ और हमने पट्टे के लिए 1.5-2 साल पहले आवेदन करा था तो आज हमें प्राप्त हुआ। हमें बहुत खुशी हुई और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का दिल से आभार करना चाहूंगी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से 82 लाख पात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया है। वहीं 84 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ा गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नए जुड़े लाभार्थियों को अब मुफ्त राशन के अलावा निःशुल्क इलाज, गैस सिलेंडर सब्सिडी और 5 लाख रुपए की दुर्घटना सहायता का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का गिव अप अभियान की देश भर में सराहना की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की है। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में श्री मोहन ने सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों की सुगम यात्रा के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। इधर प्रदेश में परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में राजस्थान के 2

लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 27 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई की उस अर्जी को मंजूरी दे दी है जिसमें नीट यूजी पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मांगी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने

0: किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कल पुलिस मुख्यालय में हुई अपराध समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि संगठित अपराध और धमकी देकर वसूली करने वाले गिरोहों पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का उपयोग करते हुए गैंगस्टरों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने और उनके बैंक खातों को सीज करने के भी निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को नशा तस्करी रोकने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके अलावा साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जनजागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां की जा रही हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को दस्तरोधी दवा देंगे।
1: 5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त रोगों से होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर संपर्क कर दस्त रोग की पहचान, बचाव और उपचार संबंधी जानकारी देंगे तथा ORS पैकेट और जिंक टैबलेटों का वितरण करेंगे। सभी चिकित्सा संस्थानों में ORS कॉर्नर स्थापित कर ORS तथा जिंक टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही सही से हाथ धोने की विधि, स्वच्छ पेयजल उपयोग, भोजन को ढककर रखने तथा खुले में शौच से रोकने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा ताकि दस्त रोग से होने वाले गंभीर परिणामों से बचा जा सके। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में रहा। वहीं जैसलमेर में 41.3 और बाड़मेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच कल कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां हुई। श्रीगंगानगर, सीकर, कोटपुतली बहरोड और चूरू में तेज धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जयपुर और पिलानी तथा झुंझुनू सहित कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का ये दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है।

0: लिसनर्स, हम भी आपके बिना अधूरे हैं और चल रहा है प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। हमारा भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 12 वर्षों में देश के विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। श्रोताओं, आज हम अवेयरनेस में जिक्र करेंगे विकसित भारत और सरकार के 12 वर्ष पर। डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और तकनीकी नवाचारों ने आज नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है और आज हमारा भारत दुनिया के अग्रणी डिजिटल देशों में अपनी पहचान बना रहा है। अब तक के वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
1: बिल्कुल विद्या, और जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें या बड़ी अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, बल्कि विकसित भारत का मतलब है एक ऐसा देश जहां हर नागरिक को अवसर मिलते हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, तकनीक का लाभ गांव तक पहुंचता है, बुनियादी सेवाएं सुलभ हैं, और साथ साथ सबसे जरूरी है हर व्यक्ति की भागीदारी, ये भी उतनी ही जरूरी है। जिम्मेदार नागरिक पर्यावरण की रक्षा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं और साथ साथ समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। ये सब इसी विकसित भारत की यात्रा का हिस्सा है। सोचिए, आपके अनुसार विकसित भारत के निर्माण में एक नागरिक के रूप में आपका क्या योगदान हो सकता है? क्योंकि विकसित भारत एक लक्ष्य नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का एक संकल्प है जो साझा है। हम सब मिलकर जब कदम बढ़ाएंगे तो देश के निर्माण में जुट सकते हैं और देश को विकसित बना सकते हैं पूरा।
0: सही कह रही है ज्योति। नए एक्सप्रेसवे, रेलवे परियोजनाएं, आधुनिक हवाई अड्डे और बेहतर सड़क नेटवर्क देश की प्रगति को गति दे रहे हैं। इसके साथ ही स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल भी किए गए हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने युवाओं और उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। विकसित भारत का सपना केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं होगा, इसमें देश के प्रत्येक नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, समाज के विकास में योगदान देते हैं, हम विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं।

0: लिसनर्स, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। पारा चढ़ा है शहर का और जहन भी है बेहाल। पारा चढ़ा है शहर का और जहन भी है बेहाल। गर्मी के शोर में उलझे हैं सारे ख्याल। कुछ बूंदे बारिश के मिल जाए तो राहत मिले, ठहरे कुछ पल सुकून से और संभले दिल के हाल। लिसनर्स, वेदर एंड हेल्थ में हम बात करेंगे बढ़ते तापमान का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस चलचलाती गर्मी में हर कोई मानसिक शांति चाहता है कुछ पल सुकून के, ठंडक के साथ। उफ, ये गर्मी ज्योति जिसने सभी को आजकल बेचैन किया हुआ है। हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है बढ़ता तापमान और उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर। इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, हीट वेव और लू से सभी बेहाल है, जिसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर हो रहा है। लंबे समय तक तेज धूप में रहने से हीट स्ट्रोक भी बढ़ रहा है और साथ ही अगर हम लापरवाही रखेंगे तो ये जानलेवा भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है या तापमान बढ़ जाता है ना, तो हमारे शरीर का अंदरूनी सिस्टम भी हिल जाता है। ज़्यादा पसीना निकलने से विद्या नमक की कमी हो जाती है, तो चक्कर आना और थकान आने जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। और गर्म हवाएं चलती है तो हमारे शरीर का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है। इससे तेज़ बुखार और सरदर्द सा महसूस होता है। फिर चिलचिलाती धूप है, अगर अल्ट्रावायलेट रेज की भी समस्या बढ़ जाती है, यानी कि हमारी स्किन को फ़र्क पड़ता है, टैनिंग की समस्या भी बढ़ जाती है। और एक और बात करें तो गर्म मौसम में खाना भी जल्दी से खराब हो जाता है, तो पेट दर्द या फूड पॉइजनिंग का खतरा भी होता है। तो तापमान के साथ साथ अगर पोल्यूशन है, मिट्टी अगर ज़्यादा आसपास है, तो अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो ऐसा लगता है तापमान बढ़ता है तो हमें परेशान करती है, लेकिन इन्हें सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका असरदार इलाज भी तो है।
0: बिल्कुल है, और तेज़ गर्मी ने जहाँ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया

0: है जिससे तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या बढ़ती जा रही है। इन सबसे बचने के लिए सबसे पहले अपने मन को एकदम शांत रखें, किसी भी बात पर अनावश्यक बहस ना करें, शांत मन से अपने कार्य को करें। परेशानी हर किसी के जीवन में है, खुद की मानसिकता को सकारात्मक रख के सामने वाले की बात को समझें, फिर जवाब दें ताकि आप भी सही रहें और सामने वाले को भी हम सही खुद को प्रेजेंट कर सकें।
1: बिल्कुल विद्या, छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाओं हों या फिर या पहले से जो कोई किसी बीमारी से जूझ रहे लोग होते हैं ना, तो वो इस मौसम में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षित रखें। और जाहिर तौर पर जो उनसे ज़्यादा या बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, उन लोगों को चाहिए कि उन लोगों का कुछ खास ख्याल रखें ताकि उन्हें इस मौसम से परेशानी ना हो। आप जूस पी सकते हैं, अपने तरल पदार्थ अपने खाने पीने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के समय ज़रूरी ना हो तो बाहर जाने से बचें। कहीं जा रहे हैं तो एक तो कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करें इन दिनों में, दूसरा सर ढक करके चलना है, जो सामान्य सी चीज़ें हैं उनका तो ध्यान रखना ही है। पेड़ लगाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उसकी देखभाल भी हमें करनी चाहिए ताकि भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हमारा ये एक कदम साबित हो सके।
0: बिल्कुल ज्योति, घर के अंदर ठंडा वातावरण बनाए रखें, माहौल को खुशनुमा बनाएं। यदि आज हम जागरूक होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य दे सकेंगे। अपनी मनस्थिति के साथ स्वयं को भी खुश रखें और अपने परिवार को भी। स्वस्थ जीवन शैली के साथ एक अच्छी दिनचर्या को अपने जीवन में उतारें, सुरक्षित रहें और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान अवश्य दें।

0: तो ज्योति, हमारे प्रोग्राम से चलने का वक्त हो गया है, इच्छा तो नहीं है लेकिन जो घड़ी है वो इजाजत नहीं दे रही है, तो आज के नमस्कार उदयपुर से इजाजत लेते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं थी आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: ज्योति।
0: तो इस गाने के साथ ही दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। ये आकाशवाणी उदयपुर है। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुने प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।

0: नमस्कार, मैं हूं अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
1: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
1: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
1: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक

0: झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुंगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही।

0: की थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
2: फिर मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, Only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओ जॉन्सी।
1: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
0: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया।

0: सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
0: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
0: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
3: सू।

0: ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
1: बिल्कुल जॉनसन।
0: हाँ, हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
1: पत्ता?
0: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
1: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉनसन, मैंने देखा।
0: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
1: हाँ जॉनसन, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
0: हाँ, हाँ।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
3: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉनसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
1: जॉनसी, कैसा महसूस कर रही हो?
0: बेहतर।
1: ये लो कॉफी पियो।
0: थैंक यू
1: जॉनसी। एक बुरी खबर भी है।
0: क्या हुआ?
1: वो मिस्टर बेरमन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
0: कौन बेरमन? वही बुरे कलाकार?
1: हाँ।
0: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही, मिस्टर बेरमन।
0: ओ गॉड,
1: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
0: क्या?
1: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
0: क्यों नहीं गिरा?
1: हाँ,
0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
4: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
1: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
1: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉनसी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।

0: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
1: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुने फिल्म संगीत। पहली पेशकश अनजाना अनजाने फिल्म से आवाजें मोहित चौहान और श्रुति की।

ये गीत था पत्थर के फूल फिल्म से, आवाजें थी एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की फिल्म संगीत की अगली पेशकश उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम और प्यार हो गया। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
6: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

ये गीत था मोहित चौहान और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम 8x10। फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म का नाम सनम तेरी कसम।

अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की। फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत सुनते हैं सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में, फिल्म का नाम संघर्ष।

संगीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आरजी विद्या के साथ। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम सुनेंगे राग ललित।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के
3: नाम। दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
7: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया।
8: बन गया बजट?
7: हाँ 5,000 बच गए।
8: तो नई साड़ी ले ले।
7: ना पिछले महीने तो ली थी।
8: एक और
7: नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
8: बढ़िया
7: जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: गली गली आवाज ये जाए हर घर अपनी गणना करवाए मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
10: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
11: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
12: राग ललित शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुनी। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के ठीक 11:30 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत में कुछ चंद गजलें। पहली गजल जगजीत सिंह आशा भोसले गुलाम अली साहब और शुभा मुद्गल की आवाज़ों में है।

सुगम संगीत का आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको एक और बेहतरीन गजल सुगम संगीत में, जगजीत सिंह, आशा भोसले, गुलाम अली साहब और शुभम मुदगिल की आवाजों में।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया फीडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया फीडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन,
7: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
6: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
8: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
6: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
8: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
6: आप कौन?
3: RBI कहता है
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना हमारा विकास।
11: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
12: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
13: ये गजल जगजीत सिंह, गुलाम अली साहब, शुभा मुद्गल और बेगम अख्तर की आवाजों में है।
14: आज जाने

सुगम संगीत का कार्यक्रम में आप बेहतरीन गजलें सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में बेहतरीन नगमे। पहली आवाज अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की है।

हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। बड़ी ही प्यारी फिल्म, बड़ी ही प्यारी आवाज़ अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की इसमें थी। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का और आप हैं आरजी एकता के साथ। जन्नत 2 फिल्म से एक और बेहतरीन सा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। राहत फतेह अली खान साहब की इसमें आवाज़ें, सुनते हैं।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में सोनू निगम, श्रेया घोषाल, नीरज श्रीधर की आवाजों में एक और बेहतरीन सा गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम राज 2।

0: एक कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमको का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में संदेश के बाद एक बार फिर आपको सुनवाते हैं बेहतरीन गीत। सैयारा फिल्म से ये गीत है, विशाल मिश्रा का संगीत, विशाल मिश्रा का गीत और हंसिका पारिक इसकी आवाज़ इसमें है।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम किस्मत कनेक्शन।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, आप है आरजी एकता के साथ, और आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं रमैया वस्ता भैया फिल्म से, आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की इसमें आवाज़ है।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते एक संदेश और उसके बाद फिर से प्यारा सा गीत सुनवाएंगे।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन। 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल। वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
0: फिल्म लक से आपको सुनवाते हैं सलीम मर्चेंट की आवाज में ये गीत।

बड़ी ही प्यारी फिल्म अभी आपने सुनी, और इस फिल्म से आपने गीत भी सुना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बड़ी ही प्यारी फिल्म। इससे आपको गीत सुनवाएंगे शिखर और सलीम नीति मोहन की आवाज़ों में, ये प्यारा सा गीत।

इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से, मोहित चौहान और अलसिया मंदोसना की आवाजों में।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में बेहतरीन ढंग में अभी आपने सुने, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। दोपहर के 1 बजने को है, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में सक्रिय और समावेशी भागीदारी आवश्यक है।
1: आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे, दृष्टिकोण रखे और किस तरीके से सकारात्मक योगदान भारत के युवाओं का हो सकता है, भागीदारी हो सकती है, इसके लिए ये युवा संसद विशेष रूप से नई दिशा, नया दृष्टिकोण देगी।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही टेलीग्राम को 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए पुराने संदेशों को एडिट करने की सुविधा भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। एनटीए के अनुसार यह कदम परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के झूठे दावे गढ़ने और अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। एजेंसी ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा है कि इन उपायों से छात्रों के व्यापक हित में परीक्षा का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय और उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। बालोतरा जिले के पाटोदी गांव के पास आज एक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार यह हादसा कार के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुआ। ये सभी लोग भाई थे और कोडुका गांव से मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। वहीं एक अन्य हादसे में 2 लोगों की

मृत्यु हो गई और एक महिला घायल हो गई। ये दुर्घटना पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास पर हुई, जब एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। ये सभी लोग जोधपुर से सिरोही जा रहे थे। उदयपुर के कोटड़ा में सेई बांध टनल के विस्तार का 95% काम हो गया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कल कार्यस्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 15 जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमावत ने बताया कि इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। टनल की चौड़ाई बढ़ने से इसकी जल निकासी क्षमता 328 से बढ़कर 1376 क्यूसेक हो जाएगी। इससे मॉनसून के दौरान सेई बांध का पानी बेकार बहकर गुजरात नहीं जाएगा और जवाई बांध अब 50 की जगह केवल 22 दिन में भर सकेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून बारिश और आंधी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज भरतपुर में आंधी बारिश की गतिविधियों से मौसम सुहावना हो गया। वहीं किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जयपुर सहित कल कई जिलों में तेज आंधी के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में ओले भी गिरे। चूरू के सरदार शहर में तेज अंधड़ से दिन में ही अंधेरा छा गया। तापमान में आए इस बदलाव से कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि फलौदी 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश का ये दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा।

0: राम राम अनिता भैसा, राम राम।
1: राम राम पूजा भैसा, राम राम।
0: सहेलियारी बाड़ी हुणवा वाली आपणी हंगली बेना ने आपणो
1: राम राम, राम, राम सा।
0: देखो भैसा कार्यक्रम रो टेम भी होन आपणी भी देखो हंगली बेना, देखो रतन भैसा न लता भैसा न मुन्ना भैसा न चंदा भैसा सब देखो रेडियो सेट रेड़े भड़े आई गई है न वे वाट नाल रही है कि आज आपणी बेना जो है कार्यक्रम रे पीटारा रे महीने कई कई जानकारी लाया है। तो भैसा बतावा आपणी बेना ने जानकारी, लेकिन वणु पेला भी बतावा सा देखो सा आपणी बेना व्रतवास चाल रहा।
1: हाँ हाँ।
0: पुरुषोत्तम महीना रा आपणी बेना रे, और देखो सा जेठ रो महीनो तो 15 दिन वे गयो पुरुषोत्तम महीना व्या, और देखो चार ही मेरे भक्ति रो देखो आपा देखा तो जगदीश, हाँ सा जगदीश मंदिर देखा तो श्रीनाथ जी देखा तो, और आपणी बेना भी देखो सा भक्ति रे रंग में रंगी लगी कटे भजन पाठ करी पूजा पाठ करी न देखो सा व्रतवास चाल रहे बेना रे। और आज आपणी बेना जो है देखो सा थोड़ी सी फ्री भी है, यानी कि कहवा मतलब फ्री तो कई कही सका, और
1: हाँ हाँ।
0: आपणी बेना व्रत पास हूँ देखो सा व्रत भगवान रे महीने भक्ति की दी है।
1: हाँ।
0: और आज देखा जेठ रा 15 दिन जो है वे अबे और देखो चालेगा सा, तो असी गर्मी रे महीने भी आपणी बेना ने केवा सा कि भाई थोड़ो सो खान पीन रो और आपणी बेना ने ध्यान राखनो है सा। और जानकारी आपणे सब पहला बेना ने करावा कि वित्तीय समावेशन और ग्रामीण जितने भी आपणी बेना है
1: हाँ।
0: वे आत्मनिर्भर गणित को बन सके है।
1: बिल्कुल सही बात की दिशा। देखो पूजा भिषा, अगर आपणी बेना ने वित्तीय समावेशन और ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भर बनना है, तो देखो ग्रामीण महिला में वित्तीय जो समावेशन है वो आत्मनिर्भरता लावारो केवल एक जो आर्थिक लक्ष्य है वो नहीं वे, बल्कि बात करा तो पूरा ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था ने बदल और एक ताकत रखे है सा। यदि एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम वेगा तो देखो वंडो प्रभाव ने पूरे परिवार है उन्हें गांव पर दिखाई देवेगा सा। और ग्रामीण महिला ने सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने वास्ते गणहारा बेहद व्यवहारिक असरदार रणनीतियाँ भी है सा। जनी मापा बतावा सा कि सब पहला स्वयं सहायता समूह जो भूमिका है वह किस तरह सके है सा।
0: हाँ सा, तो भाई सा स्वयं सहायता समूह जो है अपने जितने भी ग्राम बेना है वड़ाने आत्मनिर्भरता री जो के सका वा पहली सीढ़ी है।
1: हाँ
0: आपा देखा कि आपने राजस्थान रे महीने जटे वापा बात करा तो राजीविका रे माध्यम नरेहरा सा कार्यक्रम ही है जंडे महीने आपने जो बेना है वे बेहतरीन काम कर सके, और आपने जितने भी बचत है छोटी छोटी सामूहिक बचत है वणी आदत हूँ अपनी बेना जो है एक साझा कोष वणी सके। और आपातकाल रे महीने या पचे छोटा व्यवसाय रे महीने वणाने कणी कठिनाई रे महीने वे कठिन यानी कठिन दौर रे महीने वणाने ऋण आसानी मिल सके है सा।
1: बिल्कुल सा। और अंडे लावा पवात करा तो SHGS रे माध्यम भी महिला बैंक जानो है, पैसा रो हिसाब रखनो है, बैठक रो संचालन कणी तरह करनो है, ये भी उनमें सीख सके, और हाथे हाथे वे निर्णय लेवा में भी आत्मविश्वास वाणा में आते जावे सा।
0: हाँ सा, और देखो सा जटे आप वित्तीय समावेशन री अनिता बैसा बात कर रहे हैं तो अपनी बेना ने बतावा कि वित्तीय समावेशन जो है अपनी बेना ने बैंकिंग सेवा तक आसान पहुंच अंडे माध्यमों वन रही है सा।
1: बिल्कुल सा।
0: अंडे माध्यमों अगर आप केवा तो बैंकिंग सखी जंडी आप बात करा कि गांव ने महीने आप पढ़ी लिखी जितनी भी अपनी महिला बेना है
1: हाँ।
0: वे बैंकिंग सखी के रूप में प्रशिक्षित वे के बनाने कर सका जो वे घरे घरे जाइन या पे पंचायत स्तर पे डिजिटल बैंकिंग है पैया निकालनो किस्त जमा करानो पेंशन वितरण गणित

0: तो अनीता बैसा कतरो बढ़िया राजस्थानी गीत हुनायो हांजी रे सैलानी। और अपने देखो बेना जो है वणा ने आप बतावा कि देखो अबार अपनी बेना जो छुट्टिया रे महीने छुट्टिया रे दन चल रहा है, टाबरा टूबरी भी छुट्टिया है और अपनी बेना काम काजी है, वणा रे भी देखो छुट्टिया चल रही है।
1: हाँ।
0: तो घूमवा फरवा जा रही है और देखो सा घूमवा फरवा अपनी बेना भी जा रही है और अपने घर महीने जितना भी बूढ़ा ठाड़ा मना के जन आप वरिष्ठ नागरिक के वहा
1: बिल्कुल
0: तो देखो वणा रा भी मन करे की आप भी घूमवा फरवा जावा। हाँ सा
1: बिल्कुल सा
0: तो वणा रे वास्ते हाँ सा तो वणा रे वास्ते अपनी जो सरकार है जो एक योजना वणी तक की है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना।
1: हाँ
0: अंडे 12 महीने आप वणा ने जानकारी करावांगा सर।
1: बिल्कुल सर, देखो राजस्थान सरकार देव स्थान विभाग द्वारा संचालित जा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है जा की 2026 के तहत राज्य के बुजुर्ग ने देश विदेश के प्रमुख जितना भी धार्मिक स्थल है वटे निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है सा। और अणि वर्ष में आप देखा तो कम से कम 56,000 वरिष्ठ नागरिक अणि योजना का लाभ देवर वास्ते अंडो लक्ष्य तैयार किया है सा। और देखो योजना जुड़ी थकी घनी सारी वार्ता है उनका पात्रता है और उन्हें जो आवेदन रही जो प्रक्रिया है वह कई वे आप पूरी जानकारी अपने बहन ने देवा सा।
0: हाँ सा देखो सा योजना रा जो मुख्य आकर्षण है ये बतावा सा
1: हाँ।
0: एसी ट्रेन री जो यात्रा है वह आप बतावा कि 50,000 वरिष्ठ नागरिक है वणाने विशेष वातानुकूलित ट्रेन रे जरिए देश रे विभिन्न तीर्थ स्थल रा दर्शन कराया जाएगा। और हवाई यात्रा री जटे बात करा वैसा तो 6,000

0: तो अनीता भैसा देखो कतरो बढ़िया गीत सुनायो केसर की क्यारी गुल बनड़ा। तो देखो सा क्यारी री जटे बात कर रहे हाँ केसर री क्यारी री और फूला री जटे बात कर रहे हाँ। तो अपनी बेना ने बतावा कि फूला री जो खेती है और वंडो व्यवसाय है वो कणी तरीकों करनो चाहे वंडा कई लाभ है अंडे बारा में जानकारी करावंगा सा।
1: बिल्कुल सही बात करी सर। देखो पूजा भाई साहब फूला री जो खेती अंडो व्यवसाय आज के टाइम पे एक बेहद और आकर्षक मुनाफा वालों क्षेत्र बन चुके ऐसा, क्योंकि आप देखा हाँ कि पारंपरिक जितना ही फसला रे मुकाबले फूला री जो खेती है वह प्रति एकड़ अधिक आय प्राप्त भी अणु वे सके ऐसा, जिन्हें कि आप देखो धार्मिक कार्य में है, त्यौहार में है, शादियाँ में, सजावट में, इत्र रूप में, मतलब अतिहारी चीज़ के रूप में आप उद्योग में फूलारी मांग आप देखा तो पूरा साल वणी थकी रहे ऐसा। तो आप कह सका कि फूलारी बहुत ही उपयोगिता है ऐसा।
0: हाँ जी बात कह रहे हो भाई साहब। और जटे फूलारी खेती की बात करा तो कई मुख्य प्रकार है ये भी अपनी बेना ने बतावा।
1: हाँ सर।
0: खुला खेतर में इन्हें खेती रे वास्ते अपनी बेना जैसे गेंदा है, गुलाब है, गुलदाउदी है, ये सब मौसमी फूल है अनारे खुला खेतर में इन्हें आसानी उगाई सके और अंडी खेती जो है अपनी बेना आसानी कर सके ऐसा। और संरक्षित खेती री जटे बात करा पोली हाउस रे महीने जरबेरा है, कार्नेशन है, लीली है, ये सब विदेशी या उच्च गुणवत्ता वाला जितना भी फूल है ये पोली हाउस रे महीने उगाई सके है और अनारे मौसम रो प्रभाव बिल्कुल भी अंडे माते नहीं पड़े और अंडी जो पैदावार है वह कई गुना बढ़ जावे है सा।
1: बिल्कुल सर। देखो व्यवसाय रे वास्ते आप फूलारी जो खेती है वंडो भी आप चयन करा तो देखो फूलारी खेती रे वास्ते दो भागा में आप इन्हें बांट सका हाँ। खुला फूल जड़ी में आप अभी बताया हाँ कसा कसा फूल वे सके अन इन्हें बिना डंडे तोड़ो जे सके जंडो के उपयोग आप माला बनावर वास्ते धार्मिक पूजा रे वास्ते और सजावट में भी अंडो वेवे है सा। और अन में आप बताया कि प्रमुख जितना भी फूल है गेंदा है, गुलाब है, मोगरा है और गुलदाउदी है। और अनी तरह अगर आप कटा थका फूल की बात करा तो अन जो लंबी डंडी है अंडे साथ आप इन्हें काटी सका हाँ सा। और अंडा जो उपयोग है अपने गुलदस्ता बनावर वास्ते आधुनिक सजावट में काम ऐसा और अंडी बाजार में कीमत है वह भी हाउतरों मिले ऐसा।
0: और वैसा जटे फूलारी खेती री बात बताई रहा हाँ अपने बेना ने तो अंडो जो फूलारी खेती रो व्यवसाय है वो कणी तरीकों शुरू कर सके बेना। यो भी बतावा कि
1: हाँ
0: सब पहली बाजार रो अध्ययन करनो है अन्य बहने सब पहले यो देखनो है कि अपने क्षेत्र महीने अड़े बड़े शहर रे महीने कणी फूल री सब ज्यादा मांग है। शादियाँ वे गया, त्यौहार वे गया, सीजन अंडे महीने फूलारी खपत बहुत बढ़ जावे है। तो बाजार रे अध्ययन माध्यम अपनी बेना जो है व्यवसाय कर सके और वंडे केड़े मिट्टी और जलवायु री जाँच भी करनी है कि खेत री जो मिट्टी है वह वंडी जाँच करवें वंडे अनुसार फूलारो चुनाव करनो चाहे। उचित जल निकासी और धूप री जो उपलब्धता भी बहुत जरूरी है सा। वो फूलारी खेती कर रहे हाँ तो वंडो लाइसेंस और पंजीकरण मेनो भी बहुत जरूरी है। कृषि विभाग या बचे उद्यानिकी विभाग को जुड़ीन सरकारी योजना और सब्सिडी रो भी अपनी बेना लाभ आसानी ले सके है सा।
1: बिल्कुल सर। हाथे हाथे अपने ध्यान भी रखना जो खेती करी रहा तो उन्नत तरीका कई कई वे सके यानी कि आप पॉली हाउस ग्रीन हाउस खेती जिस जड़ी में भी आप जरबेरा है, गुलाब है, कार्नेशन है, जैसा महंगा फूल है

0: अपना तकनीकी सब अणारी जो है बेहतरीन व्यवस्था और अंडो जो तापमान और नमी है वह भी नियंत्रित अणमी की दो जावे सा जणों की जो फूलों की जो गुणवत्ता है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेवे है सा।
1: हाँ सा, और देखो सा जटे आप फूला री खेती बात कर रहा तो उनका कई मॉडल है कमेरा ये भी बतावा
0: हाँ
1: कि थोक व्यापार रे माध्यम हो जिससे कि मंडिया रे मैंने थोक भाव मैंने फूल सीधा जो है अपने बेना जो है व्यापारी या पचे दुकानदार ने बेची सके। और जो फूल बने रहा है वे गुलदस्ता है सजावट रे माध्यम हो शादिया वेगी होटला वेगी या पचे कहीं भी कार्यक्रम रे मैंने फूला री जो सजावट है वर्णा रे मैंने वे फूल काम में ले सके है और वे खुद रिटेल बुके बनाई भी अपने बेना बेची सके है सा।
0: बिल्कुल सर, तो आप कह सका कि फूला री खेती करें अपनी जो बेना है बहुत सारा व्यवसाय कर सके छोटा छोटा उद्योग भी कर सके हैं।
1: हाँ, और जटे बेना अपनी खेती करती है तो बनाने भारत और राजस्थान सरकार के माध्यम पोली हाउस लगावे वास्ते फूला रे बीज पौधा खरीदवारे वास्ते भारी सब्सिडी मिले है।
0: बिल्कुल
1: जनु अपनी बेना जो है नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या पचे उद्यान विभाग के माध्यम भी संपर्क कर सके और या आसानी सरकारी सहायता
0: ले सके सर। तो देखो या तो बढ़िया जानकारी दी सा और अभी को तो अपनी बेना ने एक और बढ़िया राजस्थानी गीत सुनाओ सा।
1: हाँ सा,

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, नहीं झुमके
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: तो अनीता भैसा देखो बढ़िया सो गीत हुनायो, देखो घेरा ढोल बाजे और लुल लुल पायल बाजे, कतरो बढ़िया गीत हुनायो, बेनारो मनोरंजन करवायो, लारे लारे संदेश भी हुनाया सा। और अबे जानकारी ने आगे बढ़ावा और करावा कि नंदगर पोषण वाटिका कई है, अंडे बारे में बतावा सा।
6: बिल्कुल सही बात करी सा, नंदगर पोषण वाटिका आप बात करा तो वेदांता लिमिटेड एक प्रमुख पहल है, जहाँ अंडो उद्देश्य की आंगनवाड़िया ने आधुनिक केंद्र में बदलना वाला, ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण ने दूर करना है सा। और यो घर रो आंगन रे खाली स्थान में जटे भी मौसमी सब्जियां है फलारो जैविक तरीका वाला ने उगाइन उन्होंने प्रोत्साहित करना चाहे सा।
5: हाँ सा, पोषण वाटिका की जटे बात करिए हाँ पैसा तो अंडा कई उद्देश्य और कई लाभ है ये भी बतावा सा। कंडे में ताजा और पौष्टिक आहार के माध्यम अपने जितने भी गर्भवती बेना है धात्रिक बेना है और 6 साल कम उम्र जितना भी बच्चा है वना ने रसायन मुक्त और ताजा सब्जियां और फल मिले अंडे वास्ते जो ये नंदगर पोषण वाटिका है। अंडो अंडो जो है वेदांता रे माध्यम आंगनवाड़ी ने आधुनिक केंद्र में बदलियो है सा।
6: बिल्कुल सा, और अंडे अलावा आत्मनिर्भरता और बचत रे अगर आप बात करा तो देखो ग्रामीण परिवार ने अपने हरी सब्जियां खरीदवार वास्ते बाहर नहीं जानो पड़े, जानियो कही है कि उन्हारे पैसा री बचत भी अंडे में वही सके है सा। और हाथ हाथे जैविक खेती ने भी बढ़ावो मिले सा, अंडे में जैविक खाद ने उपयोग पर जोर दी तो जावे जो की स्वास्थ्य वास्ते बहुत ही लाभदायक वही सके है सा।
5: देखो सर जागरूकता री जटे बात करा तो स्थानीय समुदाय ने अपने स्वास्थ्य पोषण और पर्यावरण के प्रति जागरूक करवारो बहुत ही बढ़िया और सशक्त माध्यम है नंदगर पहल। जो अंडे आप नंदगर पोषण वाटिका है जो देश भर रे महीने अपने कई राज्य रे महीने आंगनवाड़ी रे माध्यम हूँ पोषण वाटिका ने विकसित कर जणू कही अपने जितना भी ग्रामीण समुदाय है वहाँ ने जीवन स्तर महीने सकारात्मक बदलाव आई रो है। और अणु कही है कि देखो अपने जितनी भी बहना है एक स्वस्थ भी रह रही है। देखो आप देखा कि नाना नाना टाबर जो कि कुपोषित है 6 साल कम तो वड़ा ने पूरो अणी जो वाटिका है पोषण वाटिका अंडो महीने पूरो पोषण मिल रो है। अपने जो बेना है जनारी जरा आप थाली के वहां वा सतरंगी जो आप पोषण री जो थाली के वहां वा भी अंडे महीने पोषण रे माध्यम वड़ा ने पूरो पौष्टिक आहार मिल सके है सा।
6: तो देखो या तो आप अपनी बेना ने बढ़िया बताया कि नंदगर पोषण वाटिका कई वे और अंडा कई कई उद्देश्य लाभ भी सके है। और अब एक अपनी बेना ने एक और बड़े राजस्थानी लोग सुने था सा।
5: हाँ सा,

0: बहुत ही जरूरी है
1: सा। बिल्कुल सर, और हाथ हाथी ध्यान रखना कि अपना जो खान पान है वो पूरा हाउतरू लेना चाहे सा, यानी कि पौष्टिक आहार अपने लेना चाहे सा, क्योंकि अन्य दौरान शरीर में पानी की कमी नहीं वेवा देनी चाहे सा, भरपूर अपने पानी पीना चाहे सा। हाथ हाथी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, आयरन भरपूर खाना अपने खाना चाहे सा, क्योंकि ब्लडिंग के कारण शरीर में कमजोरी आई सके ऐसा अन्य बात रो अपने ध्यान रखना सा।
0: हाँ जी बात की रहो सा, और लारे लारे अपने महीना ने कम कम 7-8 घंटा नींद भी लेनी है, और हल्को फुल्को व्यायाम करना है, थोड़ो बहुत चालनो फरनो भी चाल जावे, जनू कही कि अपनी महीना जो है बिल्कुल स्वस्थ रहे। और सा बहन भाई सा कार्यक्रम में मैंने जानकारी तो अपनी महीना ने और

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कोई आपसा इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें इसमें थी। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं जाने तू या जाने ना फिल्म से, रशीद अली साहब की आवाज़ इसमें है।

जोश फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। कुछ ना कहो फिल्म से एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है। उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें इसमें हैं।

66.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:10 हो चुके हैं। सुनते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा में आज का विषय है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार। जी हाँ, बात कर रहे हैं प्रहार की। तो प्रहार यह रणनीति भारत के सक्रिय रक्षा तंत्र के मूल स्तंभों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संक्षिप्त रूप है। भारतीय नागरिक और हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम, खतरे के अनुरूप और त्वरित प्रतिक्रियाएं देना, समग्र सरकारी दृष्टिकोण में तालमेल हासिल करने के लिए आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, खतरों को कम करने के लिए मानवाधिकार और कानून के शासन पर आधारित प्रक्रियाएं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कम करना जिसमें कट्टरपंथ भी शामिल है, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित और आकार देना, समाज के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। आतंकी हमलों की रोकथाम की बात करें तो भारत खुफिया ब्यूरो के अंतर्गत बहु एजेंसी केंद्र MSE और संयुक्त खुफिया कार्यबल JTFI द्वारा संचालित एक सक्रिय खुफिया आधारित आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण का पालन करता है ताकि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा की जाए। कानून प्रवर्तन एजेंसियां भर्ती प्रचार और संचार के लिए इंटरनेट के आतंकवादी दुरुपयोग का सक्रिय रूप से मुकाबला करती है, साथ ही भूमिगत कार्यकर्ताओं OGW के समर्थन नेटवर्क को नष्ट करती हैं। समन्वित अभियानों का लक्ष्य और अवैध हथियार गिरोहों और आतंकवादी समूहों के बीच उभरती गठजोड़ को खत्म करना और कानूनी ढांचों के माध्यम से आतंकवाद के वित्त पोषण को बाधित करना है। सीमा सुरक्षा बल और आव्रजन अधिकारी भूमि, वायु और समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को तैनात करते हैं, साथ ही बिजली, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करते हैं। प्रतिक्रिया स्थानीय पुलिस प्राथमिक प्रतिक्रियाओं के रूप में कार्य करती है जिसे विशेष राज्य आतंकवाद विरोधी सिटी बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा मजबूत किया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

0: अंकित करती है विधि के शासन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करके राष्ट्रीय सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलित स्थापित करता है। कानूनी रीढ़ में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम के लिए अधिनियम UAPA 1967 शामिल है, जो नए आपराधिक कोड, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ PMLA 2002, शस्त्र अधिनियम 1959 जैसे विशेष कानूनों द्वारा समर्थित है। दुरुपयोग को रोकने के लिए नीति में जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक एक मजबूत बहुस्तरीय न्यायिक निवारण प्रणाली पर जोर दिया गया है, जो उचित प्रक्रिया, किफायती कानूनी प्रतिनिधित्व और अपील के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करती है। अनुकूल परिस्थितियों को कम करना या कठोर सुरक्षा के पूरक के रूप में सॉफ्ट पावर दृष्टिकोण पर केंद्रित है। यह चरमपंथी विचारों का मुकाबला करने के लिए सामुदायिक नेताओं, धार्मिक प्रमुखों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए एक बहुहितधारक कट्टरपंथ विरोधी ढांचे के माध्यम से कट्टरपंथ के मूल कारणों को संबोधित करता है। नीति कट्टरपंथी युवाओं के प्रति श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया अपनाती, जिसमें मामूली मामलों में पुनर्वास और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्राथमिकता दी जाती है। इसमें भर्ती को रोकने के लिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है और इसमें विचारधाराओं को कमजोर कैदियों से अलग करके जेल में कट्टरपंथ को रोकने के उपाय भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित करना और आकार देना यह बहुत से राजनीतिक और कानूनी रणनीति के माध्यम से आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति को लक्षित करता है। इसका उद्देश्य पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों, प्रत्यर्पण संधियों और संयुक्त कार्य समूहों JW का उपयोग करके सुरक्षित करता है। हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, वहां से हम सुनेंगे समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और

0: सरकार है, जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है।
1: देखिए, अगर हम आज के डेट में जी 7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपने वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि जी 7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
2: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे एआई आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी एआई डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
3: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी डीपीआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और यूपीआई जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें एआई को जोड़ देती हैं, तो भारत का डीपीआई बहुत विविधतापूर्ण उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो एआई मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
2: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
5: कैसे हम विकसित भारत के

0: संकल्प को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले
1: दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
0: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले
1: कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: UNSC reform would be grossly inadequate.
4: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
1: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्यभर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम अनिता भैसा, राम राम।
1: राम राम पूजा भैसा, राम राम।
0: कृषि जगत हुणो वाला हंगला किसान भाई बहना ने अपन
1: राम राम, राम सा।
0: देखो भैसा कार्यक्रम में आया हाँ, तो किसान भाई बहना रे वास्ते भांत भांत री जानकारी लेने आया हाँ सा।
1: बिल्कुल सा।
0: तो सब पहली किसान री बात रे मैंने कई बतावांगा भैसा।
1: देखो भैसा आप अपने किसान भाई ने बतावांगा, देखो वर्षा टाइम आवा वालो है और वर्षा टाइम पे अपनी जो सब्जियां की खेती है वह कनी तरह करनी चाहे सर, कसी कसी सब्जी अपने बोनी चाहे सर, यह जानकारी आप आज अपने किसान भाई ने देवा सा।
0: अनिता भैसा घनी बढ़िया जानकारी लाया हो अपने किसान भाई बहना रे वास्ते। तो अपने किसान भाई बहना ने बतावा वर्षा रे टाइम जो है सब्जियां की खेती रे वास्ते बहुत ही बढ़िया रेवे, अन समय में सब बड़ी चुनौती तो यह वेवे की खेता रे महीने कटे पानी रो भराव तो नहीं है, कीट बीमारी रो हमलो तो नहीं है और तकनीक कसी अपनी जहरी है यह भी ध्यान रखना है और अणी मौसम रे महीने सब्जियां जो है बहुत हाउ तरीका रो मुनाफो देवे, तो अणी टाइम अपने सब्जियां रे वास्ते ध्यान रखना है कि कसी सब्जियां रो अपने चुनना चाहे सा।
1: बिल्कुल सर, अणी टाइम पे अपने मौसम की जो मुख्य सब्जियां अंडी अगर आप बात करा तो देखो दो तरह की सब्जियां आप उगाई सका हाँ। सब पहला बात करा बेल वाली सब्जियां जिनमें अपने लौकी है, तुरई है, करेला है, कद्दू है, खीरा है और टिंडा है सा। और दूसरी सब्जी अगर आप बात करें तो भिंडी है, बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, ये सब नर्सरी द्वारा अपने तैयार करना चाहे और आते आते फली ये सब्जी आप अपने टाइम पे आप उगा सका हाँ सा।
0: हाँ सा, और खेती उन्नत तकनीक की जटे बात करा तो खेती तैयारियों जल निकालसी कणी तरीको करनी चाहे किसान भाई बहना ने यो भी बतावा कि वर्षा रे टाइम पानी रो जमा वेणो फसला ने बहुत ही नुकसान पहुंचावे, केवल मतलब है कि फसला रो जो सब बड़ो दुश्मन है
1: हाँ
0: वो वर्षा रो पानी जमा वेणो ऐसा।
1: बिल्कुल सा।
0: अरसा टाइम रे मैंने खेती जुताई करी मिट्टी ने हाउ

0: करेला वे गया, अणा बेल वाली सब्जा ने जमीन में बिल्कुल फैलवा नहीं देनो है। बांसो तारी मदद मचान वणी लेनो है। जणू के जमीन पे रेवा वाला फल सड़ जावे है, वणा में दाग लाग जावे है। जबकि आपा देखा कि मचान पे जो सुरक्षित फल लो लागे वे सुरक्षित भी रेवे और सीधा भी रेवे। ऐसा
1: बिल्कुल सर, हाथे हाथे आपकी ठे रोग प्रबंध है, अन्न भी लगातार अपने निगरानी रखनी चाहिए। ऐसा कि अन्य मौसम में आपा देखा तो उमस के कारण फंगस वे सके हैं, ऐसा कीटाणु जो प्रकोप है वो भी बहुत ज़्यादा वे सके हैं। ऐसा बचावने वास्ते भी अपने नीम रो तेल रो छिड़काव अपना टेम टेम पे करना चाहिए। सा जल भरा बिल्कुल नहीं वेवा देना चाहिए। सा और जरूरत पड़वा पर अपने जैविक या पे अनुशंसित फफूंद नाशक रो प्रयोग भी अपने टेम पे कर देना चाहिए। सा
0: हाँ सर, घनी बढ़िया जानकारी बताई भाई सा कि बरसाती टेम महीने अपने सब्जा की खेती घनी तरीकों करनी चाहिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ावा और आपा किसान भाई बहनों मनोरंजन करावा। बढ़िया सो गीत होना वा सा।
1: बिल्कुल सर।

0: तो अनीता भाई सा कतरो बढ़िया गीत सुनायो अपने किसान भाई बहना ने भाई सा राज करे और देखो सर जानकारी ने आगे बढ़ावा और जानकारी करावा कि जैविक कीटनाशक जो है अपने हाँ। किसान भाई बहन घरे कणी तरीको वणी सके है सर।
1: बिल्कुल सर, देखो घरे बैठी भी अपना किसान भाई चाहे तो जैविक कीटनाशक घरे वणी सके, बहुत ही आसान तरीको है। अंडे वास्ते अपने रसोई घर है या आसपास मिलने वाला जितना भी प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग अपने में कर सका। हाँ, ये कीटनाशक फसल और पौधा ने नुकसान पहुँचाए बिना हानिकारी जितना भी कीटा है बिना ने दूर रखे हैं सर।
0: हाँ सर, और बेटे आप जैविक कीटनाशक बात करिए हाँ तो कणी तरीकों अपने किसान भाई बहन जो है घरे वणी सके। सबू पहला आसानी वणावा वाला सबू असरदार जैविक कीटनाशक है वणारी विधि बतावा कि नीम रो तेल और साबुन रो घोल जो है
1: हाँ।
0: वे असरदार सामान्य कीटनाशक वेवे जंडे में नीम है एजारीडेक्टिन नामक जो तत्व वेवे
1: हाँ।
0: वो कीटा ने चक्रु तोड़ देवे है और यो एफिड से या सफेद मक्खी ने घूनू रे वास्ते भी बहुत ही बढ़िया प्रभावी वेवे है सा।
1: बिल्कुल सर, अगर सामग्री अगर आप बात करा तो 1 लीटर गुनगुनो पानी लेना ऐसा वणी में 1-2 चम्मच शुद्ध नीम रो तेल वणी में अपने मिलाई देना ऐसा आधो चम्मच तरल डिश सोप या पचे तरल साबुन ये तेल ने पानी में घोलिन घोलवा वास्ते बहुत ही मदद करे हैं ऐसा।
0: हाँ सा वणा वाली विधि बतावा कि गुनगुना पानी दे महीने तरल साबुन डाल हाउ तरीको मिले लेनो है पचे मंडे महीने नीम रो तेल डाल बोतल ने हाउ तरीको जोर हिलाई ताकि के कि तेल और जो पानी है वो एक हरीको मिली जावे सा। और पचे आपा अंडे सीधा पौधा रे पत्ते पे या पचे ऊपर नीचे दोई तरफ आपा स्प्रे करदा जणू कहिए कि कीटनाशक जो है आसानी काम करेगा सा।
1: बिल्कुल सर, और अनिला वाला लहसुन है मिर्च है प्याज और तीखो स्प्रे है अन्य भी आप चाहवा तो ये तैयार कर सका। हाँ, अंडे वास्ते कीटा ने दूर बगार वास्ते अपने के करना अंडे तेज गंध या पचे तीखापन कैटरपिलर ब्रिंग और जैसा भी चबाव वाला जितना भी कीट है वे पौधा ने दूर रखे हैं सर। तो वे कड़ी तरह बना अंडे वास्ते भी बतावा कि अंडी सामग्री की बात करा तो अपने के करना 1-2 गांठ लहसुन ले लेनी है 1 मध्यम छोटो प्याज ले लेना है 2-3 अपने तीखी हरी या पचे लाल मिर्च ले सका और 1 लीटर पानी और 1 चम्मच तरल साबुन आप ले बने सका सर।
0: सा वणा वाली विधि बतावा किसान भाई बहना ने एक लहसुन प्याज और मिर्ची ने थोड़ा सा पानी रे लारे पीस ने हाउ तरीका बारीक पेस्ट वणी लेनो
1: हाँ
0: है
1: सर,
0: पचे अणी पेस्ट ने 1 लीटर पानी रे महीने मिले 24 घंटा तक खुलो छोड़ देनो है
1: ठीक है सर।
0: पचे अगले दिन आपने कणी भी सूती कपड़ा रे महीने हाउ तरीको छान लेनो है ताकि जो स्प्रे है वे पंप बंद नहीं वेवे है। छान वाले केड़ा अपने अणी में महीने 1 चम्मच तरल साबुन मिले देनो है अणी तरीको अगर अपने किसान भाई बहन वणाएगा ये कीटनाशक घरे तो देखो सा एक तो कीटनाशक जैविक रहेगा और घरे बने लगा कीटनाशक जो है आपने जो पौधा है बनाने वास्ते भी सही रहेगा सा।
1: बिल्कुल सर, अगर अंडे उपयोग की बात करा तो अपने मिश्रण ने आप हर 4-5 दिन में अपने पौधा ऊपर अपन छिड़काव कर सकेंगा ताकि कहीं होगा जितना भी आपका कीट होता है वे कीट अड़ी में खत्म हो जाएगा सा। और तीसरी विधि अगर आप बताओ तो जैसे छाछ है मट्ठो जिन्हें आप कह सका हिंग रो स्प्रे अणु कोई वेगा कि जैसे कवक है या कीट है अंडे वास्ते बहुत ही फायदेमंद वे वैसा पुरानी या पचे खट्टी छाछ ने पौधा वास्ते एक बेहतरीन फफूंद नाशक और कीटनाशक रो काम में आवे ऐसा। देखो अंडे वास्ते सामग्री की बात करा तो 1 लीटर खट्टी छाछ छतरी पुरानी वेगा वतरी हाउरे वेगा सा 4-5 लीटर पानी ले लेना सा और 1 चुटकी अणी में हींग पाउडर अपने मिला देना चाहे सा।
0: हाँ सा वणा वाली विधि बतावा कि खट्टी छाछ से महीने हींग और पानी ने हाउ तरीको मिले लेनो है और आपा चाहवा तो शक्तिशाली वणावरे वास्ते छाछ ने तांबारे बर्तन में 4-5 दिनारे वास्ते रख छोड़ देवा पचे या हरी या नीली तरीकारी वे जावे कॉपर सल्फेट रो यो रूप ले लेवे है। और उपयोग की बात करा तो यह पौधा पे स्प्रे करवाऊँ फंगस जतरा भी जैसा ये है फफूंदी है ये सब छोटा मोटा कीट है यणु दूर भाग जावे।
1: बिल्कुल सर, देखो जैविक कीटनाशक उपयोग करता टाइम पे अपना कुछ जरूरी सावधानी भी ध्यान रखना है सा। परीक्षण बात अगर बात करा तो पूरा पौधा पर छिड़े को पहला आना पौधा ने 1 या 2 पत्ता पर अपने स्प्रे करें देख लेना चाहे सा कि 24 घंटा रो ध्यान रखना कि कम से कम 24 घंटा तक वहीं पर छिड़काव करना अपने देख लो अगर अपना पत्तो जो है वो जल्यो तक नहीं है पीलो नहीं पड़ो या बचे पूरा पौधो सुरक्षित है तो बचे अपने छिड़काव करना चाहे सा।
0: हाँ सर, सही समय की बात करा अनीता वैसा तो कीटनाशक रो छिड़काव हमेशा हाँज रे टेम या पचे सुबह जल्दी करनो चाहे तेज धूप रे महीने अपने छिड़काव करवो जो अपने पौधा की पत्तिया है वे झुलस सके पौधो मर सके अणी वातरो ध्यान रखनो है। और ताजा इस्तेमाल री बात करा तो घरे वणिया लगा कीटनाशक ने महीने कोई केमिकल नहीं वेवे है तो अणु कहिए कि अपने जो है अपना कीटनाशक ने बहुत लंबा टेम तक भी रख सका जरूरत के मुताबिक ताजा बनावा में भी ये बढ़िया रहेगा सा। और अगर अणा कीटनाशक रो आप उपयोग करांगा तो जितना भी ये खास कीट है कत्ते है कीड़ा है मिली बग है अणारे नियंत्रण रे वास्ते भी बढ़िया रहेगा सा।
1: बिल्कुल सर, तो देखो वैसा अपन तो यूज कहो कि अगर अपना किसान बई चावे घरे भी जितना भी जैव कीटनाशक आप बताया है वे वणे अपने फसल ने सुरक्षित रख सके हैं सर।
0: हाँ सर, देखो वैसा का जानकारी

रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर

0: टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: तो अनीता भैसा कतरो बढ़िया गीत हुनायो किसान भाई बहना ने, और देखो सा छुट्टियां रदन चल रहा है और सारे महीने देखो आपने जो बहना है और आपने जितना भी किसान भाई बहना है आपने किसान बहना है वे देखो सा आपने कतरी तो पियर परी गी है इन कतरी देखो जहरी है। तो आप किसान भाई बहना ने तो यो इस कांगा के आपने जितने भी बहना है वाने खेती बाड़ी रो काम तो भाई पूरा साल करनो ही से।
4: हाँ सर।
3: देखो सा आपने छोरा छाबरा रे अगर छुट्टियां है आपने काम काजी बहना है तो वाने भी देखो अब छुट्टियां है तो वाने देखो सा घाणा ने माध्यम आपा तो यो इस कांगा का अपने जितने भी बहना है वना ने पीर रखी दो सा।
4: बिल्कुल सही बात थी सा। और देखो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और बातचीत कर कि देखो बकरी पालन करीन अपना किसान भाई कतरो लाभ उठाई सके है या बकरी पालन करो कोई कई लाभ है बारे में जानकारी देवा सा।
3: हाँ सा।
4: देखो सा बकरी पालन करीन अपना किसान भाई आपा देखा तो कम लागत में इन्हें आपा समूह पिलावे शुरू कर सके, यानी कि कम कम पैसा आएगा तो भी आपा इन्हें आपा का अन्य व्यवसाय आपा चालू कर सके। हाँ, और जल्दी आय देवा वालों व्यवसाय भी हत्या दूध है मांस है खाद है या अतिरिक्त जितना भी आ है अणिमें बढ़ोतरी वेती जावे सा। और छोटा किसान और महिला वास्ते ये तो बहुत ही उपयुक्त व्यवसाय वेवेसा।
3: हाँ सा, और कम वर्षा वाला क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया रहे सा, स्वरोजगार रो भी हाउ साधन मान्यो जावे है। और आपा जटे बात करा बकरी री प्रमुख नस्लारी तो सिरोही री जटे बात करा तो राजस्थान री प्रसिद्ध नस्ल है, मांस उत्पादन रे वास्ते भी हाउ मान्यो जावे, कम चारा रे महीने भी देखो सा या पालन योग्य है।
4: बिल्कुल सा। और मारवाड़ी नस्ल री अगर आप बात करा तो देखो शुष्क क्षेत्र रे वास्ते बहुत ही उपयुक्त व्यवहार सा, और अंडेला वाणी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वह भी हाउ तरु व्यवहार।
3: हाँ सा। जखराना री बात करा तो अलवर क्षेत्र री प्रसिद्ध नस्ल है, अधिक दूध देवारी उत्पादन क्षमता भी देखो अबार छुट्टिया है तो वना ने देखो सा अणि घाणा ने माध्यम आपा तो यो इस कांगा का अपने जत्र भी बेना है वना ने पीर रखी दोसा।
4: बिल्कुल सही बात थी सा। और देखो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और बातचीत कर कि देखो बकरी पालन करीन अपना किसान भाई कतरो लाभ उठाई सके है या बकरी पालन करो कोई कई लाभ है बारे में जानकारी देवा सा।
3: हाँ सा।
4: देखो सा बकरी पालन करीन अपना किसान भाई आपा देखा तो कम लागत में इन्हें आपा समूह पिलावे शुरू कर सके, यानी कि कम कम पैसा आएगा तो भी आपा इन्हें आपा का अन्य व्यवसाय आपा चालू कर सके। हाँ, और जल्दी आय देवा वालों व्यवसाय भी हत्या दूध है मांस है खाद है या अतिरिक्त जितना भी आ है अणिमें भी अणिमें बढ़ोतरी वेती जावे सा। और छोटा किसान और महिला वास्ते ये तो बहुत ही उपयुक्त व्यवसाय व्यवसाय।
3: हाँ सा, और कम वर्षा वाला क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया रहे सा, स्वरोजगार रो भी हाउ साधन मान्यो जावे है। और आपा जटे बात करा बकरी री प्रमुख नस्लारी तो सिरोही री जटे बात करा तो राजस्थान री प्रसिद्ध नस्ल है, मांस उत्पादन रे वास्ते भी हाउ मान्यो जावे, कम चारा रे महीने भी देखो सा या पालन योग्य है।
4: बिल्कुल सा। और मारवाड़ी नस्ल री अगर आप बात करा तो देखो शुष्क क्षेत्र रे वास्ते बहुत ही उपयुक्त व्यवहार सा, और अंडेला वाणी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वह भी हाउ तरु व्यवहार।
3: हाँ सा। जखराना री बात करा तो अलवर क्षेत्र री प्रसिद्ध नस्ल है, अधिक दूध देवारी उत्पादन

0: जटे आप बात कर रहे हाँ, तौंडे महीने आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, भूमि दस्तावेज आवश्यक रूप लेनो चाहे है। और अपने किसान भाई बहन जो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन रे माध्यम भी यानी पोर्टल पे जाइन आवेदन कर सके है सा।
1: बिल्कुल सा, तो देखो यह तो आप बात की थी कि बकरी पालन कर वाला कई कई लाभ सके, कसी कसी नस्ल आ सके और खड़ी तरह अपने आवास प्रबंधन करना चाहे सा। और अब देखो तो अपने किसान बहन एक बढ़िया राजस्थानी लोग सुने था सा।
0: हाँ सा,

0: तो अनीता भैया कतरो बढ़िया गीत सुनायो किसान भाई बहना ने। और देखो सा जानकारी तो और भी करानी है कार्यक्रम में मैंने आया हाँ, लेकिन देखो अबे घड़ी रियाड़ी नाड़ा तो अबे अपने कार्यक्रम में मैंने चालवारो टाइम भी गयो तो चाला सा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा।

0: के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों और भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक तथा अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेता आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सांधिकालीन सभा के प्रसारणों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर शाम के 5 बजे हैं। हमारी सांधिकालीन सभा के प्रसारण मीडियम वेव चैनल पर अब आरंभ होते हैं। सबसे पहले सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम को आप हमारे FM चैनल पर भी सुन सकते हैं। एक साथ

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित।
1: और मैं हूं वंदना। स्वागत कर रहे हैं आप सभी का इस खूबसूरत सी शाम में अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी के साथ। तारीख है 16 जून और वक्त हो चला है एक शानदार सफर की शुरुआत करने का। तो चलिए मिलकर करते हैं आज की इस हसीन शाम का आगाज।
0: बिल्कुल वंदना, और आज का हमारा बुलेटिन बेहद खास है। उभरता भारत में हम बात करेंगे देश के बदलते सेक्स रेशियो की, तो वहीं ट्रैवल डायरीज में आपको ले चलेंगे सीधे हेमीज नेशनल पार्क की हसीन वादियों में।
1: सिर्फ इतना ही नहीं हर्षित, आज मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में सुलझाएंगे अमेलिया ईयरहार्ट का रहस्य। साथ ही सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस और वर्ल्ड सी टर्टल डे को।
0: और हमारी स्पेशल ट्रिब्यूट और बर्थडे सेगमेंट्स में आज बात होगी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, चित्रंजन दास, बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती, डायरेक्टर इम्तियाज अली और स्पोर्ट्स लेजेंड्स गियोकोमी अगोस्टिनी और जान जेलेज़नी की।
1: और हाँ, हमेशा की तरह टुडेज हिस्ट्री, साथ ही स्पोर्ट्स अपडेट होगा और शेयर मार्केट की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ,
0: क्योंकि शाम अभी शुरू हुई है। लेट्स गेट इट स्टार्टेड।

0: जिस घर में बेटी मुस्कुराती है वहाँ खुशियाँ खिल जाती है, जिस समाज में नारी का सम्मान हो वहाँ तरक्की खुद ब खुद चली आती है। दोस्तों, भारत आज दुनिया के सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते देशों में से एक है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, खेल और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन किसी भी देश का विकास तभी पूर्ण माना जाता है जब वहाँ महिलाओं को और पुरुषों को सम्मान जो है, अवसर सब समान मिले। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, उभरता भारत और लिंगानुपात पर।
1: बिल्कुल हर्षित, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम केवल बड़ी बड़ी इमारतों और आधुनिक सुविधाओं की नहीं

0: बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां बेटा और बेटी दोनों को बराबरी का दर्जा मिले।
1: अब लिंगानुपात है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि आसान शब्दों में कहें तो हर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है।
0: ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि समाज की सोच और महिलाओं की स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण संकेतक है। अगर किसी समाज में महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है तो यह चिंता का विषय माना जाता है।
1: दोस्तों, हमारे समाज में लंबे समय तक ऐसी सोच रही कि बेटा परिवार का सहारा होता है जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। इसी सोच के कारण कई बार बेटियों को वह अवसर नहीं मिल पाते जो उनके लिए वो हकदार होती हैं।
0: सही कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में भी बेटियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसका असर लिंगानुपात पर भी दिखाई देता है।
1: लेकिन समय के साथ लोगों की सोच में बदलाव आया है। अब लोग समझने लगे हैं कि बेटियां भी परिवार और समाज की उतनी ही महत्वपूर्ण सदस्य है जितने की बेटे।
0: आज का भारत बदल रहा है। आज बेटियां केवल घर तक सीमित नहीं हैं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है।
1: चाहे खेल का मैदान हो, अंतरिक्ष की दुनिया हो, सेना हो या प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता को साबित किया है।
0: आज गांवों से लेकर शहरों तक लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही है, अपने सपनों को पूरा कर रही है और देश की प्रगति में योगदान दे रही है।
1: वंदना, इस बदलाव में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा, वर्ष 2015 में शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश भर में एक जन आंदोलन की तरह सामने आया। इसका उद्देश्य था बेटियों को बचाना, पढ़ाना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना।
1: इस अभियान ने लोगों को यह संदेश दिया कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि देश की शक्ति हैं। स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।
0: इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना ने भी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत माता पिता अपनी बेटी के नाम पर बचत कर सकते हैं जिससे उसकी शिक्षा और भविष्य की जरूरतें पूरी की जा सके।
1: वंदना, कई राज्यों ने भी अपनी अपनी योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को मजबूत बनाना है
0: और इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहले की तुलना में अब अधिक परिवार बेटियों की पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं।
1: लेकिन दोस्तों, केवल योजनाएं और कानून बना देने से बदलाव नहीं आता है। असली बदलाव तब आता है जब समाज अपनी सोच बदलता है।
0: बिल्कुल सही, अगर घर में बेटा और बेटी दोनों को समान प्यार, समान शिक्षा और समान अवसर मिले तो समाज अपने आप बदलने लगता है।
1: दोस्तों, बात करते हैं कि कुल जनसंख्या लिंग अनुपात क्या है। NFSH 5th के द्वारा 2019 और 21 के रिकॉर्ड्स देखें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भी प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का रिपोर्ट आई है। ग्रामीण बनाम शहरी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं आई गई है।
0: इसी के साथ भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात में भारी भिन्नता पाई जाती है। केरल लगातार 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के लिंग अनुपात के साथ अग्रणी स्थान पर है और उसके बाद पुडुचेरी का स्थान आता है। दमन और दीव 618 और दादरा और नागर हवेली 774 के साथ लिंग अनुपात पे हैं।
1: युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, इसलिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी युवाओं पर है।
0: अगर आज का युवा यह तय कर ले कि वह बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करेगा तो आने वाले वर्षों में भारत और अधिक मजबूत बन सकता है।
1: युवाओं को अपने परिवार और समाज में समानता का संदेश देना चाहिए। छोटी छोटी पहल भी बड़े बदलाव ला सकती है।
0: उभरता भारत वह भारत है जहाँ किसी बेटी के जन्म पर मायूसी नहीं बल्कि खुशियाँ मनाई जाती है।
1: उभरता भारत वह है जहाँ हर बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
0: उभरता भारत वह है जहाँ महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और बराबरी का अधिकार प्राप्त हो।
1: और उभरता भारत वह है जहाँ किसी व्यक्ति की पहचान उसके लिंग से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और योग्यता से हो।
0: दोस्तों, जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो केवल उनका ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास होता है।
1: इसलिए बेहतर लिंगानुपात केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं बल्कि विकसित भारत की मजबूत नींव है।
0: आइए हम सभी यह संकल्प लें कि बेटा और बेटी दोनों को समान सम्मान देंगे
1: और एक ऐसे भारत को निर्माण में लाएंगे जो अपना योगदान देंगे, हर बेटी सुरक्षित रहे, शिक्षित रहे और आत्मनिर्भर भी हो।

0: मैं भी नहीं सुलझा पाता। कल्पना कीजिए चारों ओर अथाह प्रशांत महासागर, आसमान में उड़ता एक विमान, रेडियो पर आती एक कमज़ोर सी आवाज़, और फिर अचानक सन्नाटा।
1: एक ऐसा सन्नाटा जो आज लगभग 90 वर्षों के बाद भी टूटा नहीं है। एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को दशकों तक उलझाए रखा।
0: आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय मामलों में से एक, अमेलिया ईयरहार्ट की आखिरी उड़ान की।
1: 24 जुलाई सन 1897, अमेरिका में जन्मी एक लड़की जिसने रोमांच को पसंद किया। उस दौर में जब महिलाओं के लिए विमान उड़ाना लगभग असंभव माना जाता था, तब अमेलिया ईयरहार्ट ने आसमान को अपना साथी बना लिया।
0: उन्होंने विमान उड़ाना सीखा, रिकॉर्ड बनाए और फिर 1932 में अकेले अटलांटिक महासागर पार करके इतिहास रच दिया।
1: दुनिया का चक्कर लगाने का उनका सपना था, और इसी के साथ सन 1937 में अमेलिया ने घोषणा की कि वे विमान से पूरी तरह दुनिया का चक्कर लगाएंगी। उसी के साथ एक अनुभवी नेविगेटर भी साथ में थे, फ्रेड नूनन।
0: सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा रहस्य उनका इंतज़ार कर रहा है जो आने वाले दशकों तक दुनिया को परेशान करेगा। 2 जुलाई 1937, वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अमेलिया और फ्रेड न्यूनन न्यू जिनी से उड़ान भर चुके थे। उनका अगला लक्ष्य था हाउलैंड आइलैंड, जो प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप था।
1: उड़ान के दौरान रेडियो पर अमेलिया की आवाज़ आई, ईंधन कम होता जा रहा है, द्वीप दिखाई नहीं दे रहा, और फिर रेडियो हमेशा के लिए शांत हो गया। क्या विमान समुद्र में गिर गया? क्या वे रास्ता भटक गई? क्या वे किसी अचानक या अनजान द्वीप पर उतर गई?
0: अमेरिका ने उस समय का सबसे बड़ा खोज अभियान चलाया, लेकिन न विमान मिला, न अमेलिया और न ही फ्रेड न्यूनन।
1: पहला सिद्धांत समुद्र में ईंधन खत्म होने के कारण गिर जाना। दूसरा सिद्धांत ये था कि किसी निर्जन द्वीप जैसे नुकुरो मोरो पर उतरना। तीसरा, किसी विदेशी क्षेत्र में पकड़े जाना। ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जो दर्शाते हैं कि शायद अमेलिया कहीं खो गई।
0: आज लगभग 9 दशक बीत चुके हैं। अमेलिया ईयरहार्ट की कहानी सिर्फ एक विमान के गायब होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस और रहस्य की एक अमर गाथा है।
1: शायद भविष्य में कोई नई खोज इस रहस्य का जवाब दे दे, लेकिन अमेलिया का नाम हमेशा दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में याद रखा जाएगा।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: समुद्र की गहराइयों में न जाने कितने राज छिपे हैं, आसमान की ऊंचाइयों में न जाने कितनी कहानियां खो गई है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें

0: बर्फ से ढके पहाड़, शांत वादियाँ और प्रकृति की अनमोल छटा, जहाँ हर दृश्य एक तस्वीर जैसा लगे, वहीं बसता है प्रकृति का सच्चा जादू। दोस्तों, भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो वन्य जीवों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक खास राष्ट्रीय उद्यान हेमीज नेशनल पार्क की।
1: बिल्कुल हर्षित, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित हेमीज नेशनल पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क प्रकृति और वन्य जीवन का एक अनमोल खजाना माना जाता है।
0: हेमीज नेशनल पार्क भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी।
1: यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और ठंडा रेगिस्तानी वातावरण इसे अन्य राष्ट्रीय उद्यानों से अलग बनाता है।
0: दोस्तों, हेमीज नेशनल पार्क की सबसे खास बात इसकी प्राकृतिक सुंदरता है। यहाँ दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ और शांत वातावरण मन को सुकून देते हैं।
1: यहाँ की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर से भी अधिक है। इतनी ऊंचाई पर मौजूद यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
0: गर्मियों के मौसम में यहाँ की घाटियाँ रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है, जबकि सर्दियों में पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है।
1: हेमीज नेशनल पार्क को सबसे अधिक पहचान दिलाने वाला जीव है स्नो लेपर्ड, जिसे हिंदी में हम हीम तेंदुआ कहते हैं।
0: स्नो लेपर्ड दुनिया के सबसे दुर्लभ और रहस्यमय वन्य जीवों में से एक माना जाता है। इसे देख पाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह बर्फीले पहाड़ों में छिपकर रहना पसंद करता है,
1: और इसी वजह से हेमीज नेशनल पार्क को कई लोग स्नो लेपर्ड की राजधानी भी कहते हैं।
0: नेशनल पार्क विजिट करने का सही समय अब आपको बताते हैं। मई से सितंबर अगर आपको सामान्य पर्यटन, ट्रैकिंग और प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए जाना चाहते हैं, तो यदि आपको मुख्य उद्देश्य है कि स्नो लेपर्ड ही देखना है, तो नवंबर से मार्च, विशेषकर जनवरी मार्च, इस समय लेपर्ड निचली घाटियों में आता है।
1: और आइए बताते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका है थ्रू फ्लाइट। नियरेस्ट एयरपोर्ट्स में कुशोक बकुला है, रिम्पोचे एयरपोर्ट है दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर के साथ श्रीनगर भी नियरेस्ट एयरपोर्ट्स में आते हैं। साथ ही जो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन।
0: बाय रोड भी आप जा सकते हैं। जम्मू से लेह तक सड़क मार्ग से लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, और मनाली टू लेह हाईवे तो है ही, जो कि जून से सितंबर तक खुला रहता है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर से लेह हाईवे जो है मई से नवंबर में खुला रहता है।

0: रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे को सहारा बनने से और मजबूत होने से है। जब परिवार का कोई सदस्य दूर रहकर अपने घर की खुशियों के लिए मेहनत करता है तो उसका योगदान अनमोल बन जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस की।
1: हर साल 16 जून यानी आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है।
0: इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD द्वारा की गई थी। बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे मान्यता दी। इसका उद्देश्य उन करोड़ों प्रवासी कामगारों के योगदान को सम्मान देना है जो अपने परिवारों से दूर रहकर काम करते हैं

0: और अपनी कमाई का एक हिस्सा घर भेजते हैं।
1: दुनिया भर में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका जीवन इन पैसों की मदद से चलता है। यह दिवस परिवार के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक है।
0: परिवार प्रेषण का अर्थ है वह धनराशि जो कोई व्यक्ति को दूसरे शहर या देश में काम करते हुए अपने परिवार को भेजता है।
1: यह धन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है।
0: लाखों लोग घर से दूर रहकर काम करते हैं। इन पैसों से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतें पूरी होती हैं।
1: भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाले देशों में शामिल है, जिससे परिवारों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।
0: इसके पीछे एक बड़ा त्याग है, अपने से दूर रहकर मेहनत करना।
1: डिजिटल तकनीक ने आज धन भेजना बहुत आसान कर दिया है और सुरक्षित भी, जिससे परिवारों तक सहायता तुरंत पहुंचती है।
0: यह दिवस हमें याद दिलाता है कि परिवार का अर्थ सहयोग, जिम्मेदारी और प्रेम है।
1: जो लोग परिवार की खुशी के लिए दूर मेहनत करते हैं उनका योगदान अमूल्य है।
0: दूरी चाहे कितनी भी हो जाए अपनों के साथ बना रहता है। मेहनत से कमाया हर एक रुपया परिवार के सपनों में नया रास्ता देता है। विशाल समुद्र की गहराई की बात करते हैं दोस्तों, तो आज है वर्ल्ड सी टर्टल डे, समुद्री कछुआ। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे।
1: बिल्कुल हर्षित, हर साल 16 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इन प्राचीन जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
0: समुद्री कछुए पृथ्वी के सबसे बड़े या सबसे प्राचीन जीवों में से हैं, जो लगभग 10 करोड़ वर्षों से मौजूद है। ये समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर समुद्री घास और प्रवाल भित्तियों को यानी कोरल रीफ्स के संरक्षण में।
1: आज समुद्री कछुए कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें प्लास्टिक प्रदूषण सबसे खतरनाक है। कछुए प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा होता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और तटीय विकास भी इनके अस्तित्व के लिए खतरा है।
0: दोस्तों अब ये बता दें कि हम क्या कर सकते हैं। हम प्लास्टिक का कम उपयोग करके समुद्र तटों को स्वच्छ रखकर और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहकर इनका जीवन सुरक्षित बना सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही तो बड़ा बदलाव लाते हैं।
1: समुद्र की शान बचाएं, समुद्र कछुओं को सुरक्षित बनाएं, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश फैलाएं, प्रकृति का संतुलन मिलकर बचाएं।

0: हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे जिससे लोग उसे याद रखें। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ की जिन्होंने अपने टैलेंट, हार्डवर्क और डेडिकेशन के दम पर दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। साइंस से लेकर सिनेमा, फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर स्पोर्ट्स तक, इन लोगों की अचीवमेंट्स वाकई इंस्पायरिंग है।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट से जिन्होंने इंडियन साइंस को एक नई डायरेक्शन दी।
0: आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं थी, बल्कि वे एक शिक्षक, उद्योगपति, लेखक और समाज सुधारक भी थे।
1: आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय का जन्म 2 अगस्त 1861 को वर्तमान बांग्लादेश के खुलना जिले में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर उच्च शिक्षा के लिए स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी पहुंचे।
0: वहां उन्होंने केमिस्ट्री में उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने शोध कार्यों से वैज्ञानिक जगत का ध्यान आकर्षित किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में अध्यापन शुरू किया और कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को तैयार किया।
1: उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी मर्क्यूरस नाइट्राइट नामक केमिकल कंपाउंड की खोज। इस खोज ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में पहचान दिलाई, लेकिन उनका सपना सिर्फ शोध तक नहीं था दोस्तों, उनका था सपना भारत के वैज्ञानिक को और भारत के वैज्ञानिक रूपों को आत्मनिर्भर बनाना।
0: इसी सोच के साथ उन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की, जिसे भारत की पहली स्वदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनी माना जाता है। उस समय विदेशी कंपनियों का दबदबा था, लेकिन उन्होंने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने का साहसिक कदम उठाया।
1: आचार्य रॉय का मानना था कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा और उद्योग के साथ दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करी।
0: उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई सम्मान मिले। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर CIE और बाद में नाइटहुड से सम्मानित किया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अपने छात्रों और देश की प्रगति थी।
1: आज जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो याद रखना चाहिए कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने यह सोच एक सदी पहले ही अपनाई थी। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान, शिक्षा और उद्योग मिलकर किसी भी देश का भविष्य बदल सकते हैं। साइंस के बाद बात करेंगे अब एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी

0: चितरंजन दास सिर्फ एक सफल वकील बनकर नहीं रहना चाहते थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब उन्होंने अपनी आरामदायक जीवन और बड़ी आय को पीछे छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह खुद को समर्पित किया।
1: उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कई कीमती कपड़े और वस्तुओं तक त्याग दी थी।
0: 1923 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर उसकी नीतियों का विरोध करना और भारतीयों की आवाज़ को मजबूती से उठाना।
1: उनकी नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रभक्ति के कारण लोग उन्हें देशबंधु कहने लगे। यह उपाधि उन्हें किसी सरकार ने नहीं बल्कि जनता ने अपने प्यार और सम्मान से दी थी।
0: चितरंजन दास महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक सुधार और गरीबों के उत्थान के भी समर्थक थे। वे मानते थे कि आज़ाद भारत तभी मजबूत बनेगा जब समाज का हर वर्ग आगे बढ़ेगा। दुर्भाग्य से 1925 में मात्र 55 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन पर अमिट छाप छोड़ दी।
1: आज भी इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करता है जिसने अपने ज्ञान, नेतृत्व और त्याग से देश की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी।
0: उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए किए गए योगदान में होती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आजादी के संघर्ष से अब चलते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ।

0: दौर में आई डिस्को डांसर, जो गाना है आई एम अ डिस्को डांसर, वो दुनिया भर में मशहूर हुआ।
1: अगर उनके पुरस्कारों की बात करें तो मिथुन दा को 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो कि पहला मृग्या के लिए, दूसरा ताहेदार कथा के लिए और तीसरा जो है स्वामी विवेकानंद फिल्म के लिए। उनके अभिनय के लिए मिला है इस स्वामी विवेकानंद के लिए। इसके अलावा उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए।
0: हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा है। यह सम्मान उन्हें दशकों लंबे योगदान और भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। साथ ही 2022 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा।
1: आप यकीन नहीं करेंगे, 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं मिथुन दा। उनकी सफलता का राज सिर्फ उनका अभिनय नहीं बल्कि उनकी मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने वाला रवैया है।
0: उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रतिभा के साथ अगर लगातार मेहनत और आत्मविश्वास जुड़ जाए तो सफलता जरूर मिलती है।
1: अब मिलते हैं एक ऐसे फिल्म मेकर से जिनकी फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है।
0: इम्तियाज़ अली, ये बॉलीवुड के सबसे क्रिएटिव डायरेक्टर्स और राइटर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी फिल्म्स की कहानियाँ आम जिंदगी से जुड़ी होती है, इसलिए ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाती है।
1: उन्होंने जब वी मेट, रॉक स्टार, हाईवे, तमाशा और लव आजकल जैसी यादगार फिल्में दी हैं। इन फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की बल्कि ऑडियंस के दिलों में भी जगह बनाई है।
0: इम्तियाज़ अली को कई फिल्मफेयर अवार्ड्स और इंडस्ट्री ऑनर्स मिल चुके हैं। उनकी खास बात यह है कि वो फिल्म्स जो हैं, उनकी जो फिल्म्स हैं, वो कैरेक्टर्स को बहुत ही रियलिस्टिक और इमोशनल तरीके से पेश करते हैं।
1: बिल्कुल, इसी वजह से आज के यंग फिल्म मेकर्स भी उनके काम से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आइए अब सुनते हैं उनकी ही चर्चित मूवी का एक गीत, जो अब सुनेंगे हम मिथुन दा का एक गीत डिस्को डांसर मूवी से।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्मों की दुनिया से अब चलते हैं स्पीड और एडवेंचर की दुनिया में, जहां एक रेसर ने रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी।
4: जियाकोमो अगोस्टिनी इटली के एक लेजेंडरी मोटरसाइकिल रेसर हैं और उन्हें मोटर स्पोर्ट्स हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट राइडर्स में गिना जाता है।
3: उन्होंने अपने करियर में 15 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स और 122 ग्रैंड प्रिंक्स विंस हासिल की है। ये रिकॉर्ड्स आज भी उनकी ग्रेटनेस को दिखाता है।
4: 1960 और 70 के दशक में उनका नाम मोटरसाइकिल रेसिंग का पर्याय बन गया था। उनकी स्पीड, कंसिस्टेंसी और फियरलेस राइडिंग स्टाइल ने उन्हें एक लेजेंड का दर्जा दिलाया।
3: आज भी मोटरस्पोर्ट्स के नए प्लेयर्स उनके रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स को बेंचमार्क के रूप में देखते हैं।
4: और अब आखिरी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने शब्दों और विचारों से लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा,
3: येन ज़ेलेज़नी। येन ज़ेलेज़नी अपने लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। उनकी राइटिंग्स में सोसाइटी, कल्चर और ह्यूमन इमोशंस का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है।
4: उन्होंने अपने लेखों के जरिए लोगों को नए नजरिए से सोचने के लिए प्रेरित किया। उनकी रचनाएं आज भी रीडर्स के बीच पसंद की जाती है और लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन का काफी बड़ा सोर्स है।
3: उनका काम हमें ये सिखाता है कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है और कैसे एक लेखक समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है।
4: तो दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में जाना जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल की है।
3: इन सभी लोगों की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, चाहे फील्ड कोई भी हो, डेडिकेशन, हार्डवर्क और पैशन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। और स्पोर्ट्स अपडेट में सबसे पहले हम आपको बताते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। आज मैच ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ, जो कि ड्रॉ हुआ। बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट भी हुआ, जो भी ड्रॉ था। और सऊदी अरेबिया वर्सेस लेगवेरे, जो भी ड्रॉ था। और वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका में जो कि आज मैच होगा 7 बजे, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड जो कि होगा 11 बजे।
1: तो क्रिकेट प्रेमी जो भी हैं यहाँ पर सुन रहे हैं हमें, वो ये मैच देखना ना भूलें। साथ ही आज की तारीख है 16 जून और 16 जून का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह है। तो आइए जानते हैं आज के दिन की कुछ खास बातें।
0: सबसे पहले बात भारत की। साल 1606 में सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी शहादत को सिख इतिहास

0: की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है।
1: और इसी के साथ हम अगर शेयर मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स आज 76,808.48 पर बंद हुआ 544 अंकों की बढ़त के साथ। वहीं निफ्टी 50 आज 23,989.15 पर बंद हुआ 136 अंकों की बढ़त के साथ। और वहीं एक डॉलर की कीमत 94.70 रुपीस देखने को मिली।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं था आपका रेडियो दोस्त हर्षित, और मेरे साथ थे
1: वंदना।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये सातवीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा

0: कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम एचआईएफ हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त चंचल। श्रोताओं, क्या आप भी अपने आप को बॉलीवुड फिल्मों का जबरा फैन मानते हैं? हिंदी सिनेमा में चाहे रोमांस हो या ड्रामा या थ्रिलर, कुछ तो ऐसी बात है कि हम हिंदुस्तानी लोग इन फिल्मों के दीवाने हैं। हम इन फिल्मों के किरदार के साथ हंसते भी हैं और रोते भी। सालों से इस इंडस्ट्री के साथ दर्शकों का दिल का रिश्ता है। हमारे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि पर्दे पर दिखने वाले कलाकार अक्सर हमको ऐसी जगह है कि सैर भी कराते हैं जहां हम नहीं जा सकते।

श्रोताओं, मणिरत्नम द्वारा निर्देशित 1992 की क्लासिक फिल्म रोजा की कहानी मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में आधारित थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसकी अधिकांश शूटिंग हिमाचल प्रदेश, मनाली, कुन्नूर और तमिलनाडु ऊटी के खूबसूरत हिल स्टेशनों में की गई थी, जो बिल्कुल कश्मीर जैसे दिखते थे। श्रोताओं, अब हम बात करें एक और फिल्म जिसका नाम आपको हम बताएं, जब वे मेट। इस फिल्म में दिखाई है पहाड़ों की असली खूबसूरती। फिल्म के नायिका गीत के साथ उत्तर भारत का यह सफ़र तो आपको याद ही होगा। मुंबई से अपना सफ़र शुरू कर गीत पंजाब के खेतों से होती हुई शिमला, मनाली और रोहतांग ला की पहाड़ियों तक पहुंची। इस फिल्म में अभिनेत्री का किरदार ही कुछ ऐसा है कि उसके साथ आपको भी इन पहाड़ों से प्यार हो ही जाता है। क्या आपको याद है हिमाचल के उन पहाड़ों के दृश्य, जहाँ ये इश्क हाय जैसा मनमोहक गाना फिल्माया गया था?

वो फिल्म जहां दिखाई गई छोटे गांव की सुंदरता, चंबा की सुंदर पृष्ठभूमि में फिल्माई गई वो फिल्म आज भी लोगों को याद है। क्या आपको भी वो मधुर गीत ताल से ताल मिलाओ याद है? चंबा की वादियों में ही कुछ ऐसा है कि यह फिल्म हर एक दृश्य आपको तरोताज़ा कर देता है। पहाड़ों के वो हरे भरे खेत, खेतों में मानसून के वो दिन और पहाड़ों के बीच आते जाते और अटखेलियाँ करते वो बादल, ये फिल्म सच में हमको पहाड़ों के और भी करीब ले जाती है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये जवानी है दीवानी। दोस्तों के साथ ट्रेकिंग का मजा क्या होता है, इस फिल्म से जाना जा सकता है। इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे दृश्य थे जो सच में जीवन के कुछ लक्ष्य दिखाते हैं। दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर जाना हम सबको ही पसंद है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों में पहाड़ों के कुछ अभूतपूर्व अनुभवों को दिखाया गया है। इस फिल्म में उदयपुर की एक डेस्टिनेशन वे, उदयपुर की सुंदरता सच में बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती है। मनाली का हिडिंबा मंदिर और उदयपुर की बागुर की हवेली कुछ ऐसी जगह हैं जिन्होंने इस फिल्म में बहुत आकर्षक ढंग से फिल्माया गया।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। फिल्म संगीत प्रस्तुत किया आपकी रेडियो दोस्त चंचल ने।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने ही वाले हैं। अब जुड़ते हैं हमारे जयपुर केंद्र से और सुनते हैं पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी, उसके बाद होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की आशंका वाले जिलों की पहचान कर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर 22 जून तक रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1,54,00,000 से अधिक पंजीकरण हुए, इनमें 82,00,000 से ज्यादा महिला श्रमिक शामिल। और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मृत्यु। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2026 की देशव्यापी तैयारियों के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। कृषि भवन में हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ संभावित अल नीनो स्थिति पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कम बारिश की आशंका है उनकी पहचान कर पहले से फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया जाए, जिससे किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कृषि मंत्री ने फसल वार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों की समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। बैठक में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब

मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज फ्रांस के एवियो पहुंचे। श्री मोदी लगातार सातवीं बार G7 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वहीं इस महत्वपूर्ण बहुपक्षीय आयोजन में भारत 13वीं बार भागीदारी कर रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी दुनिया के विकासशील देशों का पक्ष और चिंताएं मजबूती से रखेंगे। श्री मोदी एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लेंगे। सत्र का विषय नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना है। सत्र में G7 देशों, भागीदारी देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए बीते 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर प्रदेश में भी नीट यूजी परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था, परीक्षा सामग्री के सुरक्षित वितरण और यातायात प्रबंधन के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज करने वाली खबर का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि ये दावा निराधार है। PIB ने ये भी स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा योजनाओं से जोड़ सकते हैं। साथ ही ई श्रम पोर्टल रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दे रहा है। ये श्रमिकों को पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और आवास सहित अन्य सुविधाओं से जोड़ने वाला एकीकृत मंच है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए रीको और लघु उद्योग भारती के बीच आज जयपुर में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये आयोजन हुआ। इस मौके पर श्री राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में पत्थर और शिल्प की कोई कमी नहीं है, इसे उत्कृष्ट पहचान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टोन मार्ट पत्थर उद्योग के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर चुका है।
1: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्मल स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले हैं, मंदिर है, वो हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई देता है। और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को अब और कितना ऊंचा लेंगे।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। बारा जिले के छबड़ा क्षेत्र में पार्वती नदी में डूबने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये लोग मध्य प्रदेश के गुना के निवासी थे और छबड़ा के गुगोर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। उधर बालोतरा में आज एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पाटोदी गांव के पास रोडवेज बस और कार की टक्कर से हुई, जिसमें कार सवार चारों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास के पास एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर भिवाड़ी में एक औद्योगिक इकाई के निर्माणाधीन हौद की दीवार ढहने से 3 बालकों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कल दोपहर हुआ, जिसमें कल एक बालक की मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य बालकों ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज कोटा पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, समूचे प्रकरण की जांच की जा रही है। उन्होंने एनडीए सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए इसे बदलते भारत की तस्वीर बताया।
2: मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की सारी सुविधाओं को, सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। 7 दिन और 365 12 महीने, यानी हमारा एक निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
0: प्रेस वार्ता में मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर

0: महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर अपने शुभकामना संदेश में उन्हें आत्मगौरव के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला बताया है। प्रताप जयंती के अवसर पर सलूम्बर जिले के चावंड स्थित प्रताप स्मारक पर कल विशेष कार्यक्रम रखा गया है। उधर पाली के धानमंडी में कल होने वाले जन्म जयंती समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महाराणा की राजतिलक स्थली गोगुंदा में भी विशेष आयोजन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोगुंदा पहुंचे हैं। वहीं राजसमंद की मचींद गांव स्थित राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर प्रताप जयंती के मौके पर आयोजित दो दिन का मेला आज संपन्न हुआ। सरहदी जिले जैसलमेर में नियमित और सुचारू जलापूर्ति के लिए आज 5 नलकूपों का लोकार्पण किया गया। 55 लाख रुपए की लागत से ये नलकूप गजरूप सागर स्थित परिसर में लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की आशंका वाले जिलों की पहचान कर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर 22 जून तक रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1,54,00,000 से अधिक पंजीकरण हुए, इनमें 82 लाख से ज्यादा महिला श्रमिक शामिल। और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। अजमेर जिले में इन दिनों धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों का क्रम भी जारी है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। वहीं आगामी मॉनसून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। गुलाब की खेती और गुलकंद के लिए प्रसिद्ध पुष्कर क्षेत्र के कड़ैल गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लिया और ग्रामीणों की समस्याएं तथा सुझाव सुने। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर कड़ैल अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव में बस सेवा शुरू करने और बालिका विद्यालय की चौहार दीवारी निर्माण की घोषणा भी की। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पुष्कर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से नारी चौपाल, विशेष पूजा अर्चना, पौधरोपण, प्रदर्शनी और प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। आमजन की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई तक जिले में शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न नगरीय निकायों, उपखंडों और वार्डों में आयोजित इन शिविरों में पट्टों का वितरण, पेंशन सत्यापन, जन आधार सत्यापन, मंगला पशु बीमा, फसल बीमा पॉलिसी जारी करने, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न काम एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं। जिले में 19वें रोजगार मेले का आयोजन अजमेर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के एसटीआई ऑडिटोरियम में किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की मौजूदगी में विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रेल, गृह, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न विभागों में चयनित 558 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पुनः आयोजन की तारीख घोषित की है। ये परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले आयोजित दोनों लिखित परीक्षाओं में भाग लिया था। आयोग ने इसके साथ ही

0: आरएएस 2026 परीक्षा का विज्ञापन भी जारी किया। 607 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 192 राज्य सेवा और 415 अधीनस्थ सेवा के पद शामिल हैं। बीते दिनों जिले में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में जिगजैग पद्धति से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत फलदार और छायेदार पौधे लगाए जा रहे हैं। जनाना अस्पताल में नए कॉटेज निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हेरिटेज लाइट और सजावटी पोल लगाने के काम भी शुरू किए गए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 3 नई नियमित रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। इन रेल सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हुए हैं। उधर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 28 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर और सभागार के निर्माण काम का भी शुभारंभ किया गया। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से योग अभ्यास और योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश री शंका वाला जिला ने पिछाण कैरर फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करण बाबत कहो। 21 जून न उजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा न ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजण पर 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल तई 1,54,00,000 उम्बत्ता नाम मंडाई चिया, 82,00,000 उम्बत्ती महिला मजूर शामिल। प्रदेश में फिर न्यारा न्यारा हादसा में 10 जना री मौत। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खरीफ 2026 री तैयारियां सारू आज नई दिल्ली में आला दर्जारा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। ए दौरान कृषि मंत्री कम बिरखा री शंका वाला जिला री ओळखाण कर फसलवार तैयारी करण सारू कहो। वे फसलवार लक्ष्य बुआई री प्रगति और राज्यवार तैयारियां रो जायजो लीनो। मंत्री कपास री उपज बधावण और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन राबारा माए चर्चा कीनी। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नियम जारी करी जिया आधार कार्ड रो बेजा इस्तेमाल नागरिकता रहवास रा पता रा सबूत रा तौर करण रा आरोप वाली एक अर्जी माथे सुनवाई करता थका आज केंद्र और राज्यों जवाब तलब कीनो। अर्जी में आधार नंबर ने केवल पहचान सत्यापन रा कागज रा तौर ही काम लेवन रो हुकम देवन री अर्ज करी ची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल भेवन सारू फ्रांस रा एवियो पूग किया है। श्री मोदी लगातार 7वीं दफा G7 सम्मेलन में भाग ले रहा है जबकि भारत इनमें 13वीं दफा शिरकत कर रियो है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों रो पक्ष और चिंतावां री बात रखेला। श्री मोदी नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनः स्थापित करना मुद्दा वाला कार्य सत्र में शामिल भेला। सत्र में G7 देशों और भागीदार देशों रा नेता विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक रा नुमाइंदा शामिल भेला। श्री मोदी कनाडा रा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन रा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात रा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सागई मुलाकात करेला। 21 जून न ओजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा सारू लाडला 24 घंटा में 10,00,000 उम्बत्ता उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड कीना। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA रे मुजब परीक्षा माय साफ कोई बधावण और पेपर लीक री शंका खत्म करण सारू सरकार 22 जून ताई टेलीग्राम एप्लीकेशन रे जरिए ऑनलाइन संदेश भेजण माथे रोक लगा दीनी है।

0: एनटीएर मुजब आ रोक नीट री परीक्षारा दिन वारा तुरंत बाद ताई लागू रहवेला। एनटीएर मुजब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने 30 जून ताई पहली पोस्ट करी जिया संदेश एडिट करण रो सुबीतो बहाल नी करण सारू कही चियो है। प्रदेश में आई नीट यूजी परीक्षा साफ कोई सागर करावण सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। जयपुर रा जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि परीक्षा केंद्रा माथे कानून व्यवस्था परीक्षा सामग्री ने हिफाजत सागे पुगावण और यातायात प्रबंधन सारू पुख्ता बंदोबस्त कर्या जावेला। केंद्र सरकार सोशल मीडिया माथे चाल रही E20 ईंधन काम लेवण वाली गाड़ियां रा बीमा दावा खारिज करण वाली खबर ने गलत बताई है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई साफ किनो है कि E20 ईंधन काम लेवन वाली गाड़ियां री मोटर बीमा पॉलिसियां वैध है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक में AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 उम्बत्ता मजूर नाम मंडा लीना है। आम आए 82,00,000 उम्बत्ते महिलावां और 72,00,000 उम्बत्ता पुरुष मजूर शामिल है। राज्य री श्रम शक्ति माए महिलावां री तादाद करीब 53% है जो माली और सामाजिक हलका माए महिलावां री बढ़ती भागीदारी बतावे है। ई श्रम पोर्टल माथे नाम मंडायोड़ा मजूर एक क्लिक कर कई सामाजिक सुरक्षा योजनावां जुड़ सके है। वो पोर्टल मजूरा ने पेंशन बीमा स्वास्थ्य और रहवास समेत न्यारा न्यारा सुविधाओं जोड़े है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 सारू रीको और लघु उद्योग भारती विचे आज जयपुर में करार माथे सही करी ची। इस मौके उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ कहो कि राज्य में भाटा और शिल्प री कोई कमी नहीं है पर इन्हें ओलखाण देवन री जरूरत है। वह कहो कि स्टोन मार्ट भाटा रा कारोबार सारू दुनिया रा खास मंच रा तौर सामने आयो है।
1: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्मोर स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले हैं, मंदिर हैं, वो हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई। और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को और कितना ऊंचा लेंगे।
0: राज्य में लारला 24 घंटा माए फिर न्यारा न्यारा हादसा माए 10 जना री मौत वेकी। 12 जिला रा छबड़ा हलका माए पार्वती नदी माए डूब जावणु 4 जना री मौत वेकी। पुलिस रे मुजब ए लोग मध्य प्रदेश माए गुनारा रहवासी हा और छबड़ा कने गुगोर माए एक ब्याह माए शामिल वे वनसारू आया हा। बालोतरा जिला में पाटोदी गांव कने आज रोडवेज री बस सरकार री टक्कर रे कारण 4 जना री मौत वेकी। मरण वाला 4 ही जना कार में सवार हा जो एक ही परिवार रहा। पाली जोधपुर हाईवे माथे मंडिया बाईपास कने एक बेकाबू कार सड़क रा डिवाइडर उ टकरा जावण रे कारण 2 जना री मौके मौत वेगी, जबकि एक महिला घनी जख्मी वेगी जिनने पाली रा बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराई ची। भिवाड़ी माए एक कारखाना माए बनाए जा रहा हौद री भींत ढस जावणु 3 बच्चा री मौत वेगी और 3 बच्चा घना जख्मी वेग्या। काल दोपहर व्या ई हादसा माए एक बालक री काल ही मौत वेगी ही, जबकि 2 बालक आज दम तोड़ तीनों। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कहो है कि नीट पेपर लीक मामला माए दोषियां रे खिलाफ कार्रवाई करी ची है और मामला री जांच करी जा रही है। वे आज कोटा माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा हा। श्री बंसल केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका इन्हें बदलता भारत री तस्वीर बतायो।
2: मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की सारी सुविधाओं को, सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। 7 दिन और 365 12 महीने यानी

0: कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
1: मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागरी पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ही आज जोधपुर पुग्या। वह प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहो कि मौजूदा दौर में जानकारियां तेजियों पसरे है और बेहतर प्रौद्योगिकी रा दौर में गांव ढाणी में बैठा लोग ही आखी दुनिया रा हालात री जानकारी रखे है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कां सूर्या कहो कि केंद्र सरकार पेपर लीक रा वाकया माथे रोक लगावन सारू करड़ा चतन कर रही है। वह केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा विवरण रा सिलसिला माए खबर नवीसा ने सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। मेवाड़ रा महाराणा प्रताप री काल 486वीं जयंती मनाई जावेला। ये मौके राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाना संदेश में कहो कि महाराणा प्रताप जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता था का मुगला ने मेवाड़ भगा दीना हा। श्री बागड़े कहो कि मायड़ भूमि री हिफाजत सारू वारी लड़ाई हमेशा याद रखी जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी प्रताप जयंती रे मौके शुभकामना संदेश माए महाराणा प्रताप ने खुदरो माथो ऊंचो राखण सारू सब कुछ निछावर कर देवन वाला बताया। प्रताप जयंती रे मौके सलूम्बर जिला माए चावंडरा प्रताप स्मारक माथे खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। पालीरा धान मंडी परिसर माए काल महाराणा प्रताप जन्म जयंती समारोह मनायो जावेला। इनु पहली महाराणा प्रताप रो राज तिलक वेवन रिठौड़ गोगुंदा माए आज खास आयोजन राख्यो जा रियो है। इन माए शामिल वेवन सारू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गोगुंदा पधारिया। राजसमंद जिला रा मचींद माए राणा पूंजा पर्यटन स्थल में थई प्रताप जयंती रे मौके भरी जियो दो दिन रो मेलो आज पूरो फेंक्यो। अरब मौसम मौसम विभाग राज्य में आवता 4-5 दिन ताई प्रदेश रा कई हल्का माए आंधी और गरज चमक सागे बरसात रो सिलसिलो चालतो रहवन रा आसार जताया है। पश्चिमी विक्षोभ सागे राज्य रे ऊपर बनिया चक्रवाती तंत्र रे कारण हवा माए लगातार नमी बनियोड़ी है। इनु कई ठोणा बरसात वेवन रा आसार है। ए बीचे आज चूरू माए जोरदार बायरो बाजियो। सिंजानीपुर भीलवाड़ा जिला रा गुलाबपुरा माए झमाझम में बरसियो। बीकानेर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जैसलमेर नागौर पाली और फलौदी माए 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजन सागे अंधड़ चलन री संभावना है। पांचना बंधारो पानी नेहरा माए छोड़वारी मांग करता था का गैर कमांड हल्का रा किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप माए आज धरनो दे रिया है। किसान थोड़ी देर ताई दिल्ली मुंबई रेलवे लेन ने जाम कर दीनी। इनु अवध एक्सप्रेस गाड़ी ने थोड़ी देर ताई रोकनी पड़ी। मौका माथे जरूरी पुलिस जाप तो तैनात करी चियो है और हालात काबू माए है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश री शंका वाला जिला ने पिछाण कर और फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करण बाबत कहो। 21 जून ने ओजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा ने ध्यान रखता था का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजण पना 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 उम्बत्ता नाम मंडाई चिया। 82,00,000 उम्बत्ती महिला मजूर शामिल। और प्रदेश माए फिर न्यारा न्यारा हादसा माए 10 जना री मौत। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम नंदू भाई, राम राम।
1: राम राम अनीता भाई सा, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम सुनो वाला हंगला किसान भाई ने अपनो
1: राम
0: राम,
1: राम
0: सा।
1: देखो अनीता भाई सा कार्यक्रम में आप ही रोज आवा सा।
0: हाँ सा।
1: और आपने किसान भाई बहना वास्ते भांत भांतरी जानकारी लेना वा
0: बिल्कुल सा,
1: चाहे देखो स्वास्थ्य संबंधित वो नया नया कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं आविष्कार बेहतर है वे बंडी जानकारी भी लावा। समय समय पर देखो आपने स्टूडियो में आप ही कृषि विशेषज्ञ ने भी बुलावा और बनाऊ भी भांत भांतरी जानकारी करावा।
0: बिल्कुल।
1: और राजस्थानी लोक संगीत रो भी आनंद अपने किसान भाई बहन ने दासा।
0: बिल्कुल सा। तो देखो सा, आज आप अपने किसान भाई वास्ते ले ना आया कि जो बरसाती सब्जियां है अंडी खेती अपना किसान भाई कनी तरह कर सके।
1: बिल्कुल
0: सा। देखो बरसाती सब्जियां जी खेती आप देखा तो मानसून ने दौरान आप करा हा सा, जो कि किसान वास्ते उच्च मुनाफा स्रोत भी वे है सा। जून लगे जुलाई रे बीच भिंडी है, लौकी है, करेला है, तोरई है, टमाटर है, ऐसी सब्जियां उगाने वास्ते आप यो उपयुक्त टेम वे है सा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो जटे आप ही बात करा कि बरसात रो मौसम यानी कि खरीफ रो सीजन जो है
0: हाँ।
1: सब्जियां री खेती रे बात है बहुत ही बढ़िया भी मानियो जावे।
0: सही बात है सर।
1: लेकिन अनी टाइम पे सब बड़ी चुनौती यह है कि खेत में पानी रो भराव और कीट बीमारियों रो हमलों भी ज्यादा वे।
0: बिल्कुल सर।
1: अगर आप ही सही तकनीक अपनावा तो अनी मौसम में जो है सब्जियां पे आप ही अच्छो मुनाफो कमाई सका सा।
0: बिल्कुल सही बात करी सा। और देखो बरसाती सब्जियां री जो सफल खेती है वनडे वास्ते, देखो आपने बतावा कि अड़ी मौसम री जो मुख्य सब्जियां है यानी कि बरसात के टाइम पे दो तरह आप सब्जियां उगाई सका।
1: बिल्कुल सा।
0: सबो पहला बेल वाली सब्जी भी उगाई सका। हाँ चने में आप भी बतायो कि लौकी है, तोरी है, करेला है, कद्दू है, खीरा है, टिंडा है सा। और अन्य अगर दूसरी सब्जियां अगर आप लगावा तो भिंडी है, बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, ये सब आप नर्सरी द्वारा पहला से तैयार कर दा और हाथे हाथे ग्वारफली भी आप में लगाई सका। हाँ सा
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखो खेती री उन्नत तकनीकारी जटे बात करा
0: हाँ।
1: तो देखो खेत री तैयारी आपने करनी पड़ेगा और अच्छी जल निकासी भी व्यवस्था करनी पड़ेगा।
0: बिल्कुल सा।
1: क्योंकि आप ही जाना कि बरका रे टेम में पानी रो जमाव ज्यादा वेगा
0: हाँ।
1: और फसला रो पचे नुकसान भी आपने वही जाएगा।
0: बिल्कुल सही सा।
1: और खेत री जुताई करी मिट्टी ने भुरभुरो आपने बनावनो है और जल निकासी रो अच्छो प्रबंध आपने करनो है और पानी निकलवा रहे बात है खेत रे चारों तरफ आप ही नालियां भी बने सका सा।
0: ठीक है सा। और अलावा देखो आप बेड़ है या पची मेड़ या वन भी बुवाई आप कर सका। यानी कोई वेगा कि जड़ जवेगा वने सड़वों भी आप बचे सका। यानी कि आप कह सका कि सब्जियां ने समतल खेत में लगावार बजाय आप मेड़ या पचे ऊंचा बेड़ वने लगाऊंगा तो जब बेड़ ऊंचाई कम कम 15 लगे 20 सेंटीमीटर वने जावे यानी में कहीं भारी वर्षा भी आएगा तो पौधा री जड़ है जो पानी में नहीं डूबेगा और वो गलों भी बची सकेगा सा।
1: बिल्कुल अनीता भाई सा, आपने किसान भाई बहनों ने आप ही कहना चाहूंगा कि देखो मचान विधि रो भी आप ही अना सब्जियां रे उत्पादन में आप ही उपयोग करांगा
0: हाँ।
1: तो अणियों भी फायदो वेगा। जैसे कि बेल वाली सब्जियां रे बात है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद वे क्योंकि लौकी है, तरोई है, करेलो है, ये सब बेल वाली सब्जियां है और जमीन पर आप ही अगर इन्हें छोड़ देंगे तो जमीन पर ज्यादा उत्पादन नहीं देगा।
0: बिल्कुल सर।
1: और बांस और तार की मदद तो अगर आप ही मचान यानी कि तैयार कर लांगा
0: हाँ।
1: तो जमीन पर रहवा फल जो है सड़ी जातो और वहीं में दाग लगी जाता है जबकि मचान पर फल जो है सुरक्षित भी रहेगा और सीधा भी रहेगा।
0: बिल्कुल सर। अगर आप खेत किनारे जटे भी आप तुरई वगैरह जितनी भी बेल वाली सब्जियां वही है पास पास में अगर आप बांस होना ने सारो दे दा तो वाकई में जो बेला है जो ऊंची तरफ चढ़ जाएगा और वहीं में अपने जो फल है वे भी सुरक्षित रहेगा और कटे सड़ा और लागी रहेगा तो आपने तुरंत दिखेगा तो आप जो भी कीटनाशक उपयोग है वो आप कर सकेंगा सा।
1: बिल्कुल सर।
0: किसान भाई ने फायदो भी वेगा सर। अंडे अलावा कीट है और रोग प्रबंधन भी अगर आप बात करा तो देखो लगातार अपने निगरानी रखनी बहुत जरूरी है कि अणी मौसम में कई वे की उमस के कारण कई वे फंगस ज्यादा वे जावे सा और कीटा जिस तरह की फल मक्की रो प्रकोप भी ज्यादा दिखवाने मिले हैं तो बचाव रे वास्ते अपने नीम रो तेल रो छिड़काव टेम टेम पे कर देना चाहे सा। और जटे भी जल भराव वीर हो तो जल भराव बिल्कुल नहीं व्यवहार देना है। जरूरत पड़ने पर अपने जैविक या पचा अनुशंसित जितना भी फफूंद नाशक है वनडो प्रयोग भी अपने टेम टेम पे करना चाहे सा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अने में आप कुछ खास बातों रो ध्यान भी रखी सका जैसे कि देखो बोऊ पहली अपने बीजा ने टाइकोडर्मा या कहीं अच्छा फफूंद नाशियों उपचारित जरूर करना है ताकि शुरुआती दिनों में पौधा फंगस री वजह खराब नहीं वेवे। और यो बीज उपचार तो देखो आपने हर फसल में आपने करना ही पड़े सा।
0: बिल्कुल सही बात किया। और देखो मल्चिंग तकनीकी है जब भी आप काम में ले सका अगर आपने संभव है तो बेड पर प्लास्टिक मल्चिंग पेपर इस्तेमाल भी आप कर सका। हाँ अणि में कही कि बरसात में खरपतवार नहीं वेगा और मिट्टी कटा भी आसानी रुक सके है सा।
1: बिल्कुल सा। एक और खास बात अपने किसान भाई बहना ने आप बताना चाहूंगा देखो कसी भी फसल आप उगावा तो देखो वंडी उन्नत किस्म जो आपने खरीदी लानी सा।
0: सही बात है।
1: और वह भी अट्टू खरीदनी जटे आपने जो अच्छी दुकान वे विश्वसनीय जा भी जगह है बटू आपने वो बीज खरीदी लानो तो अंडे हिसाब देखो जलवायु रे हिसाब बटे रोग प्रतिरोधी और हाइब्रिड किस्मारी बीजारो जो है बटे आप ही चुनाव कर सका सा।
0: बिल्कुल।
1: और बड़ी जगह पे देखो अगर आप

0: सरकारी दुकान उलावांगा या कहीं विश्वसनीय स्रोत उलावांगा तो देखो कतरी दान कही कि बीज खराब बीज आवे फसल उगाई नहीं या समस्या अपने नहीं रहेगा सर।
1: बिल्कुल सही बात है साथ। देखो आनंद भाई अपने किसान भाई ने इस क्षणों की वर्षा आवा वाली है तो वर्षा में पहला सो अपने सब्जियां चयन कर लेकर अपने कसी कसी बेल वाली सब्जियां बोनी है या कसी कसी सब्जियां बोनी है तो वहाँ वास्ते उन्नत किस्म जितना भी बीज है वे बीज भी लिया हुए हाथे हाथे अपना खेत तैयार कर देवे खरपतवार रो भी जो भी पहला सो अगर आप कर देंगे कि तो जितना भी कीटनाशक है वे भी नहीं वेगा सर। अगर ये सारी व्यवस्था अगर पहला सो करी रखेगा सारी तैयारी पहला सो करी रखेगा देखो अपने किसान मैंने फायदा भी वेगा।
0: बिल्कुल आप ठीक रहे हो। देखो पहले सो तैयारी की बात वही रही है तो देखो खाद और उर्वरक की बात करा तो खाद जो है खेत की तैयारी रे टाइम में अगर आप अच्छी सड़ी थे कि गोबर की खाद आप खेत में मिले दा और तो अणियों अपने उर्वरा क्षमता मिलेगा अंडे अलावा मिट्टी री जांच रे आधार पर अपने रासायनिक उर्वरक रो उपयोग करनो यानी कि अपने मिट्टी की जांच करावांगा तो खबर पड़ जाएगा कि मिट्टी में कड़ी चीज की कमी है बच्चे अपने वो इस चीज डालनी पड़ेगा और बाकी आप सब डालता तो बनियो अपने ज्यादा लागत भी लग जाती
1: सही बात है।
0: और खरपतवार रो जटे आप बात की थी कि खरपतवार बारिश रे मौसम में बहुत ज्यादा वेवे अंडे बात है आपने यो भी ध्यान रखना कि अपनी जहाँ भी फल सब्जी है वंडी निराई गुड़ाई जो है टाइम टाइम पे करती रहनी और खेत ने साफ कर देनो टाइम टाइम पे।
1: बिल्कुल सर अगर ये छोटी छोटी बात अगर अपना किसान भाई ध्यान रखेगा तो देखो टाइम पे अपने दो
0: बिल्कुल सा फायदो रो जटे बात की रहो तो एक राजस्थानी लोक संगीत आपने कार्यक्रम में आप ही हुणा मासा
1: बिल्कुल सुना सा।

0: तो अनीता भाई साहब, यो हुणियो आपी राजस्थानी लोकगीत
1: बिल्कुल
0: और
1: सर।
0: कार्यक्रम में देखो आपी आगे बढ़ा तो मौसम री जानकारी जो है अपने किसान भाई बहना वास्ते घनी महत्वपूर्ण व्यवस्था,
1: हाँ सर,
0: क्योंकि आपी जाना कि देखो मौसम री जानकारी रे आधार पर अपना किसान भाई जो है अपना जतरा भी कृषि कार्य है वनारो प्रबंधन करे
1: कर सके
0: सा।
1: सर।
0: और कति दान आपी देखा कि मौसम री जानकारी रे अभाव में वना ने नुकसान या फसला रो खराबो भी झेलनो पड़
1: पड़े सर।
0: जावे।
1: हाँ
0: तो
1: सर,
0: अबे देखो अपने किसान भाई बहना ने अगर आप ही मौसम की जानकारी दा तो
1: हाँ
0: देखो उदयपुर में आवा वाला दना में जो है मौसम जो है मुख्यतः साफ और धूप वालों रहेगा सा।
1: ठीक है
0: जड़ी
1: सर।
0: में अधिकतम तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहवारी संभावना है सा। और अणि दौरान वर्षा री संभावना बहुत ही न्यून है सा। और हवारी जटे बात करा तो हवा 12 मील प्रति घंटा री गतियों दक्षिण पश्चिम दिशा में चलेगा सा।
1: बिल्कुल सर। और देखो खेती बाड़ी संबंधी जितना भी कार्य है वनडे संदर्भ में अगर आप बात करा तो जो यो महीनों हैं तो उदयपुर क्षेत्र में खरीफ फसल की तैयारी के वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण
0: बिल्कुल
1: व्यवस्था।
0: सा,
1: और अन्य टाइम पे आपने कई कई कार्य कर लेना चाहे खेती बाड़ी का, तो वह मंडी भी आप बतावा कि सबों पहले अपना खेत की जो तैयारी है यानी कि खरीफ सीजन का जितना भी मुख्य फसला जिस तरह की मक्का है, सोयाबीन है, उड़द है, गवार है, अंडी बुबई के वास्ते अपने खेत जो जूते हैं वो अपने टाइम पे तैयारी अंडी शुरू कर देनी चाहे सर।
0: बिल्कुल अनीता भाई साहब, अंडे लाल ला रहे अच्छी गुणवत्ता वाला बीजा री व्यवस्था भी किसान भाई बहन अनी टाइम पे कर लेवे।
1: हाँ
0: कृषि विभाग रे परामर्श रे अनुसार मिट्टी री जांच रे आधार पर वना रे कशा कशा उर्वरक री जरूरत पड़ेगा वंडी योजना भी बनाई लेवे
1: बिल्कुल
0: सा।
1: सा। और अंडे अलावा देखो मिट्टी और जल संरक्षण की अगर आप बात करें तो देखो यो जो क्षेत्र है वो पहाड़ी और उबड़ खाबड़ वालों हैं अणि वास्ते ढलान वाला खेता में जो मिट्टी रो अपरदन है वने रोकवार वास्ते अपने पहला सु फील्ड बंडिंग यानी कि आप मेड़बंदी जिन्हें आप कह सका वो कंटूर बंडिंग जिसका संरक्षण उपाय अपने पहला सु कर देना चाहे ताकि ये कई खेती बाड़ी वास्ते बहुत ही उपयोगी भी हुए हैं सा।
0: क्योंकि मानसून की शुरुआत व्यवहारी संभावना है। अंडे बात देखो किसान भाई बहन जल निकासी की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दे ताकि ज्यादा वर्षा व्यवहार पर फसला ने नुकसान नहीं वेवे
1: और
0: सा।
1: देखो हाथी आते बागवानी री भी अगर आप बात करा था अगर अपने पास बागवानी है तो अन्य समय नया पौधा रे रोपने वास्ते गड्ढा भी अपने टाइम पे तैयार कर देना चाहे सा ताकि अगर आप टाइम पे गड्ढा तैयार करेंगे तो वर्षा आते ही ना पौधा लगाई सका। हाँ सा
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो ना। सामान्य री बात करा तो देखो
1: हाँ
0: खरीफ री बुआई रे बात विश्वसनीय स्त्रोतों आपी बात की दी कि मक्का मूंगफली दालार उन्नत बीज आपी व्यवस्था कर सका
1: हाँ
0: ताकि मौसम रहता तक अपनी बुआई रो जो टाइम जो है वहीं में आपी काम कर सका। गोबर री खाद भी अच्छी तरह खेता में आपी अनी टाइम पे मिले सका सा।
1: बिल्कुल सर। और हरी खादरी जटे आप बात करा तो हरी खादरी वास्ते भी वही थकी जितनी भी सनई है टेचा है अंडी फसल वास्ते आपने 50% पुष्पनरी अवस्था पर जूते अच्छी तरह कर देनी चाहे सा और पचे वणी में खेत में मिले देनी चाहे सर।
0: मूंग री फसल में पीच शिरा मोजेक रोग री रोकथाम रे बात आपी डाईमिथियोड 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाइन आपी छिड़काव कर सका सा।
1: बिल्कुल सर। और टमाटर की खेती अगर आप बात करा तो ये टाइम पे टमाटर जो पौधा है बने बना रो जो टाइम है ये उपयुक्त टाइम है सा। और बीजा रे थायरम रे दो लगे 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम री दरु आप उपचार रे बाद वने पौधशाला में आप अंडी बुवाई कर सका। हाँ सा
0: बिल्कुल जना क्षेत्र में कपास लगाई थकी है वना में निराई गुड़ाई रो टेम भी होवी चुक्यो है। सिंचित मूंगफली री बात करा तो सिंचित मूंगफली रे बुआई रो उपयुक्त समय जून माह रो दूसरा सप्ताह तक चाल रो है सा। और मिट्टी री जांच रे आधार पर अंतिम जुताई पहले आपने प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम जो है खेत में मिलानो है। बुआई रे टेम पे प्रति हेक्टर 375 किलोग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलोग्राम नाइले रे देनो है सा।
1: बिल्कुल सही बात थी सा। और अंडे अलावा आप बागान की बात करा तो देखो फल रहा नया बाग लगा वास्ते गड्ढा री खुदी अपना टाइम पे कर देनी चाहे सा और करिया बदवाड़ा ने बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहे सा और ताकि हानिकारक जितना भी कीट है रोगाणु है खरपतवार है ये सब बीज है वे बिल्कुल अन धूप खत्म भी जाएगा सा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो ना। देखो आप ही किसान लोग हाँ तो आप ही लारे लारे पशुपालन भी करा सा।
1: हाँ
0: पशु
1: सा
0: भी आपने आर्थिक री रीढ़ है अर्थव्यवस्था री। तो पशुआरों देखो अनी टाइम पे तेज गर्मी पड़ रही है तो पशुआ ने टाइम टाइम पे पानी पिलानो है। अंडे अलावा वना ने छायादार स्थान पर रखना है। और देखो अगर भी बीमार भी जावे तो देखो चिकित्सक को परामर्श जरूर लेना है। वनडे आधार पर वनारो इलाज भी कराना है सा।
1: बिल्कुल सा। ये छोटी छोटी बात अगर खेती बाड़ी रही है अपने पशुपालन रही अगर अपने किसान भाई ध्यान रखेगा तो देखो परिवार में खुशहाली बनी थकी रहेगा सा।
0: बिल्कुल आप खुशहाली री जटे बात की रहा हो तो खुशहाली में देखो हंसी मजाक और गीत संगीत रो भी आनंद आवे सा।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सा
0: आपने किसान भाई बहना ने एक राजस्थानी लोकगीत और सुनावा सा।
1: हुणावा सा।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो अनीता भाई सा यो हुण्यो आपी राजस्थानी लोकगीत और लारे लारे संदेश भी हुण्यो सा। और कार्यक्रम में देखो आपी समय समय पर अनी कार्यक्रम में आपने अलग अलग योजना री जानकारी भी आपने किसान भाई बहना ने देता रहा
3: सा, क्योंकि
2: आपी जाना का अपनी चाहे केंद्र सरकार वो चाहे राज्य सरकार वो अपनी लोगा री भलाई रे वास्ते समय समय पर अलग अलग योजना लावे।
3: बिल्कुल,
2: और सरकार रो उद्देश्य यो इस वे की बना योजना रो ज्यादा ज्यादा लोग फायदो उठावे और बंडो आर्थिक विकास बनारो भी सके सा।
3: सही बात।
2: और वणी मिस देखो आज आपी जानकारी लाया हाँ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिन्हें आपी एकीकृत बागवानी विकास मिशन भी कही सका सा।
3: बिल्कुल सा। और देखो भारत सरकार यह एक प्रमुख योजना है और अंडो जो मुख्य उद्देश्य अगर आप बात करा तो देखो देश में बागवानी रे क्षेत्र में समग्र विकास ने बढ़ावा देना है सा। और अणी मिशन रे तहत फल है, सब्जियां हैं, कंद वाली फसलां हैं, मसाला है, फूल है, औषधियां हैं और औषधि और सुगंधित पौधा है, नारियल है, काजू है, कोको है, ऐसी फसलां ने शामिल की दो है सा।
2: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो। योजना रो मुख्य उद्देश्य देखो फलां, सब्जियां, मसाला, फूल, बांस सहित जतरा भी बागवानी क्षेत्र रो विकास सुनिश्चित करनो और किसानारी आय ने बढ़ानो और देश में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करनो है। और यह योजना जो है केंद्र और राज्य सरकारी भागीदारियों चलाई जावे सा।
3: बिल्कुल सही बात कही सा। और देखो अणी में अगर आप बात करा जितना भी मिशन है वा मुख्य उद्देश्य बात करा तो देखो उत्पादन बढ़ानो है सा, यानी कि आधुनिक जितनी भी तकनीका है, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज है, उन्नत पौधा का उपयोग है, अड़ा सब ने करीन बागवानी फसल की जो पैदावार है वे अधिक अधिक बढ़ावा देना है सा।
2: अनीता भाई सा देखो आपने प्रधानमंत्री जी जो भी लक्ष्य है कि देखो किसानारी आय वृद्धि करनी है, वनारी आय ने दोगुनी करनी है, वनडे अंतर्गत देखो यो मिशन जो है वो भी योगदान दे रो है सा। और बागवानी फसलों रे माध्यम किसानारी कमाई ने दोगुनो या बणियो ज्यादा करवा में मदद भी अणी योजना रे अंतर्गत मिल रही है सा।
3: बिल्कुल सा। और देखो कौशल विकास और रोजगार की अगर आप बात करा तो देखो ग्रामीण युवा वास्ते महिलारी बागवानी जुड़िया तक नया जो हुनर है विने सिखाणो, ताकि वे नर्सरी है, प्रोसेसिंग है यानी कि जिन आप प्रसंस्करण कही सका, पैकेजिंग है, अणी में भी रोजगार पाइन वे आगे अपनी जो आर्थिक व्यवस्था है विने बने बढ़ाई सके है सा।
2: बिल्कुल अनीता भाई सा आप ठीक ही रिया हो। देखो कटाई रे बाद भी प्रबंधन यो आप ही बात कर रहा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, तो फसल खराब पर बचावारे वाते देखो कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड चेन है और बंडे सुरक्षित परिवहन री व्यवस्था करनो भी अणी योजना रे अंतर्गत एक लक्ष्य है सा।
3: बिल्कुल सही बात।
2: और यह योजना किस तरह काम करे अंडी रणनीति रे बारे में बात करा

0: तो देखो आणि मिशन में देश रा अलग अलग राज्य री भौगोलिक स्थिति रे हिसाबू अलग अलग उप योजना बनी रखी है साहब।
1: हाँ, बिल्कुल
0: वंडे
1: सर,
0: हिसाबू अणि में कार्य क्षेत्र हिसाबू वंडो काम वे।
1: बिल्कुल
0: जैसे
1: सर।
0: कि आप सबू पहली बात करो NHM यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन।
1: हाँ
0: अंडे अंतर्गत देखो उत्तर पूर्व और हिमालय राज्य ने छोड़ी देश रे बाकी सब राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशा में बागवानी रो विकास करियो जाई रो है
1: बिल्कुल
0: साहब।
1: सा। और अंडे अलावा उत्तर पूर्व और हिमालय राज्य की अगर बात करा तो अंडे मिशन में ने कही है कि जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और उत्तर पूर्वी राज्य की जो पहाड़ियाँ हैं वन्य अनुकूल बागवानी ने बढ़ावा देना है ऐसा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहे हो। अंडे अलावा NBM यानी कि राष्ट्रीय बांस मिशन री बात करा तो देखो बांस री खेती और वंडे सही उपयोग ने बढ़ावा देनो, बांस आधारित लघु उद्योग ने बढ़ावा देनो और लोगों ने रोजगार देनो अणि योजना रे अंतर्गत सुनिश्चित करियो जाई रो है साहब।
1: बिल्कुल सर। और NHB राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है। अंडी अगर आप बात करा तो देखो बड़ा पैमाना पर व्यावसायिक बागवानी करनी सा, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स ने मजबूत करना है सा, ताकि अणियों कई वेगा कि अंडो जो विकास है वो बढ़तो जाएगा सा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहा। देखो किसानों ने अणियों कई लाभ है अंडे बारे में बात करा तो देखो अन्य योजना रे अंतर्गत जो है किसानों ने सीधा तौर पर कई तरह की सरकारी मदद और सब्सिडी भी मिल रही है।
1: हाँ
0: नई नर्सरी और बगीचा लगा रहे बात है, अगर कोई किसान फला रहे नया बाग लगानो चाहिए है या आधुनिक नर्सरी तैयार करना चाहिए है तो वन्य जितनी भी लागत है वहीं पे एक निश्चित प्रतिशत में सब्सिडी दी जावे सा।
1: बिल्कुल सर। ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई अगर आप बात करें यानी सशक्त जल प्रबंधन की बात करें तो पानी की बचत वास्ते सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपना पर भारी छूट में मिले हैं सर।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहा। उन्हें देखो संरक्षित खेती री जटे बात करा तो वहीं में ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या नेट हाउस बनावरे वाते भी सरकार जो है वित्तीय सहायता देवे और जड़ी में गई है कि आप बे मौसम सब्जियां भी उगाई सका सा
1: हाँ
0: और पच्चे देखो बे मौसम उगे तो आप जाना बना रहा दाम भी आपने
1: हाउ
0: ज्यादा
1: मिस।
0: मिले
1: हाँ
0: सा।
1: सर। हाँ और हाथे हाथे जैविक खेती की अगर आप बात करा तो देखो जैविक खेती, केचुआ खाद और जैविक जितना भी कीटनाशक है अंडे उपयोग ने भी बढ़ावा देना ताकि वे की तकनीकी और आर्थिक मदद भी अंडे में मिल सके हैं सर।
0: बिल्कुल आप ठीक रिया हो। अणि अंतर्गत देखो बागवानी क्षेत्र रो समग्र विकास करनो और उन्हें बढ़ावा देनो सोचो गयो है, जणी में बांस और नारियल ने भी लारे जोड़ियो गयो है।
1: हाँ हाँ
0: अणि अलावा उच्च पोषण मूल्य वाली बागवानी फसलों और क्षेत्रफल ने और उत्पादन ने बढ़ावनो यो भी उद्देश्य रखियो है। अंडे अलावा गुणवत्ता और पोत सामग्री और सूक्ष्म प्रणाली रे प्रभाव रे उपयोग माध्यमों उत्पादकता में सुधार करनो भी एक अंडो लक्ष्य है। लारे लारे बात करा तो देखो बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण युवा ने प्रोत्साहन देनो और वना ने रोजगार देनो वो भी अणि योजना रे अंतर्गत जो है एक उद्देश्य है। बेहतर किस्म गुणवत्ता वाला बीजा और रोपण सामग्री, संरक्षित खेती, उच्च घनत्व वाला वृक्षारोपण, कायाकल्प, सटीक खेती, बागवानी मशीनीकरण रे माध्यम बढ़ानो है वो भी अंडो एक लक्ष्य है सा।
1: बिल्कुल
0: तो अणि मिशन रे अंतर्गत देखो अनुसंधान और विकास ने भी बढ़ावा दिया जा रो है, प्रौद्योगिक की ने भी बढ़ावा दियो जाई रो है और पुराना जितना भी जीर्ण शीर्ण बाग है वनारो कायाकल्प भी करियो जाई रो है ना। परागण रे बात है देखो अणि योजना रे अंतर्गत मधुमक्खी पालन है, बागवानी मशीनीकरण है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रो निर्माण करनो, किसानों रो प्रशिक्षण करनो, ये सब भी अणि योजना रे अंतर्गत आपी जो है अणि योजना रे अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।
1: बिल्कुल सा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अणि मिशन महिला स्वयं सहायता समूह और महिला किसान की जो भागीदारी वे वहीं पर भी विशेष जोर दी जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में महिला जो वे वो बागवानी के माध्यमों आर्थिक रूप आत्मनिर्भर भी बन सके हैं सा।
0: बिल्कुल सा। आप या तो आप जानकारी दीदी कि देखो एकीकृत बागवानी विकास मिशन कई है और अणि में देखो किसानों ने कई कई लाभ मिल रहे हैं सा और अब आपने किसान भाई बहनों ने अणि कार्यक्रम में एक राजस्थानी लोकगीत और हुनावा सा
1: हुनो सा।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो अनीता भाई से यो हुणियो आपी राजस्थानी लोकगीत और लाला रे संदेश भी हुणियो सा।
3: बिल्कुल सर।
2: और कार्यक्रम में देखो आपी नई नई तकनीक जो है फसल ले उगावारी वंडी बात करा और आज आपी बात करा कि देखो फसल विविधीकरण कई वे और अणु कई लाभ है सा।
3: बिल्कुल सा।
2: तो सबो पहले देखो फसल विविधीकरण एक ही खेत में एक ही फसल उगावारी बजाय अलग अलग और नई फसल उगावारी तकनीक है और अन्य प्रमुख लाभा में बात करा तो मिट्टी री उर्वरता में सुधार वे वे।
3: बिल्कुल सा।
2: और आय में स्थिरता आवे, प्राकृतिक संसाधनों रो बेहतर उपयोग वे और कीट रोगारे प्रकोप में भी कमी वेवेसा।
3: बिल्कुल सा। तो देखो आप बात कर रहे हैं कि जो फसल जो अलग अलग फसल लगा वास्ते और भूमि और पर्यावरण वास्ते अंडर लाभ भी बात करा तो देखो ये सब बात अच्छी है कि ये मिट्टी ने उपजाऊ क्षमता है इनमें सुधार करे यानी कि लगातार एक ही फसल उगाओ मिट्टी जो विशेष पोषक तत्व वे खत्म ही जावे सा। यदि आप मुख्य फसल के साथ दलहन है जैसे दाल उगदा हाँ तो उन्होंने जड़ा है वे हवा में नाइट्रोजन लेन उन्होंने मिट्टी ने प्राकृतिक रूप उन्हें उपजाऊ भी बनावे है सा।
2: बिल्कुल आप ठीक ही रहा हो कि देखो अंडे अलावा कीटों और बीमारियों और भी रोक लागे।
3: हाँ।
2: एक ही फसल बार बार लगावा कही है कि बनियों जुड़िया थका जितना भी कीट है या बीमारियां जो है वही खेत में घर बने लेगा।
3: हाँ हाँ।
2: और फसल बदलवा कही है कि कीटारो जीवन चक्र जो है वो टूट जावे।
3: हाँ हाँ।
2: जणियो कही है कि रासायनिक कीटनाशकारो जो आपने खर्चो वेतो पहली।
3: हाँ।
2: वो नहीं वेवे और अणियों आपने लाभ भी जाता।
3: बिल्कुल सा। और हाथ जल संरक्षण अगर आप बात करा तो देखो धान जैसी फसल में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है वैसा अगर आप एक साथ कम पानी वाली फसल जिस तरह की बाजरो है सरसों है दलहन है ये अगर अणिमें बोवंगा तो देखो अणिमें फायदा भी रहेगा और जो भूजल स्तर है वो भी पूरा सुरक्षित होने तक रहेगा।
2: बिल्कुल आप ठीक क्रिया देखो आपने बात है आर्थिक लाभ भी बात करा तो देखो बाजार जोखिम सुरक्षा वे यदि कणी साल आपी एक फसल रे दाम बाजार में भारी गिरावट रे कारण कम भई जावे तो दूसरी फसल जैसे सब्जियां मसाला या तिलहन बड़ी नुकसान री भरपाई कर देवे।
3: बिल्कुल
2: तो किसान पूरी तरह कंगाल वे या बनारो जो नुकसान ज्यादा वे तो वो अबे वणी में कमी आई जावे।
3: बिल्कुल सा। और अंडला देखो साल भर जितना भी नियमित आ है यानी कि पारंपरिक फसल साल में एक या दो बार ही आप वे बड़ी कमाई देवे। अंडे अलावा विपरीत जितने भी विविधीकरण रे तहत आप देखा तो सब्जियां है फल है औषधि पौधा है अणा लगा कही वेगा कि किसान ने हर महीने नियमित अंतराल पर नगद कमे भी उन्होंने मिलेगा जणू उन्होंने कि आर्थिक लाभ वतो वेगा सा।
2: बिल्कुल लाभ री जटे बात की रहा हो तो देखो अणियों लागत में भी कमी आवे मिट्टी री उर्वरता खुद बढ़वा लाग जावे और बीमारियां रे कम वेवा पर खाद और कीटनाशक पर अपना जो खर्चो वे तो वो अबे वंची जावे और अणियों देखो आपने लागत फसल री कम वे जावे और आपने आर्थिक रूप तरक्की मिले सा।
3: बिल्कुल सा। और देखो अंडे अलावा आप बात करा तो देखो पोषण और घरेलू सुरक्षा के बारे में बात करा तो संतुलित आहार यानी कि एक ही खेत में अनाज के साथ साथ आप दाला लगावांगा तेल और सब्जियां मिलवा वाला किसान राज्य परिवार रहे है उन्हें प्रोटीन है विटामिन है सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर संतुलित और पौष्टिक आहार भी मिलेगा सा। यो ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण लड़वा वालों सबो बेहतरीन तरीकों भी वेगा सा।
2: बिल्कुल आप ठीक ही रहा। अंडे अलावा देखो जलवायु रे विपरीत प्रभावों से सुरक्षा मिले मौसम में अचानक बदलाव या सुखारी स्थिति में विभिन्न मसाला या फसला में कोई न कोई फसल भी खराब वही जावे।
3: बिल्कुल
2: झेलिन उत्पादन अपने अणियों फसल विविधीकरण आप झेल सका सा फसल रो नुकसान रो खतरो भी कम रहे सा।
3: और अंडे अलावा देखो फसल रे विविधीकरण कही वेगा कि पशु वास्ते साल भर पौष्टिक हरो चारो भी वड़ाने मिलतो रहेगा जणू कही वेगा जो दुग्ध उत्पादन वाला है डेयरी व्यवसाय वाला है वड़ाने भी बढ़ावो मिलतो जावेगा।
2: बिल्कुल आप ठीक क्रिया। देखो फसला में विविधता लावा परागण करवा वाला जीव और मिट्टी में सूक्ष्म जीव सहित लाभकारी जीवारी एक विस्तृत श्रृंखला जो है वह बनेगा सा। अणियों कही है कि पौधा ने भी बणियों कही है कि मिट्टी की क्षरण क्षमता भी कम वेगा और बणियों आपने फायदो भी मिलेगा सा।
3: बिल्कुल सही बात करी सा। और कीट और रोग प्रबंधन रही अगर आप बात करा देखो विभिन्न जितनी प्रकार की फसला है वनडे उगाओ पूरा खेत में कीटा और बीमार जो फैलवार खतरो है वो भी कम वेत हो जाएगा सा। और अलग अलग पौधा लगाओ कहीं वे कीटा ने आकर्षित करेगा जड़ी कीटा जो चक्र है वो भी पूरा टूटता जाएगा सा।
2: बिल्कुल आप ठीक क्रिया। देखो जटे कृषि जैव विविधता में वृद्धि की बात वही रही है फसला में विविधता लावा रे बात है परागण करवा वाला जीव और मिट्टी रा सूक्ष्मदर्शी सहित लाभकारी कीटारी एक श्रृंखला ने समर्थन मिले जो कि खेत पर स्वस्थ और ज्यादा संतुलित पारिस्थितिक तंत्र।

0: योगदान करे सा।
1: और अलग अलग फसलों जो संसाधन संबंधी जितनी भी आवश्यकता है, जिस तरह की पानी है, पोषक तत्व, तो वहाँ अलग अलग वेता जाएगा, जनी कोई वेगा खेती बाड़ी जो संसाधन है वे बेहतर उपयोग करवा में मदद भी मिलेगा और कहीं भी एक संसाधन पर दबाव कम पड़ेगा सा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहा, विविध फसल प्रणाली जा है वह उपज री पोषण गुणवत्ता में सुधार कर सके, जनों कही कि पोषक तत्व री व्यापक विविधता उपलब्ध वे वे और वणा एकल फसलों पर निर्भरता भी अपनी कम वे वे और पोषण संतुलन में भी कमी आवे सा।
1: बिल्कुल सही बात की दिशा। तो देखो या तो आप अपने किसान भाई ने बताया कि जो फसल विविधीकरण है वरना घना हरा लाभ अपना किसान भाई ले सके ऐसा, और आपात किसान भाई ने भी इसके वहाँ कि वे एक ही फसल नहीं बोवे, समय समय पर टेम पे अगर फसल बदलता रहेगा तो उन्होंने आर्थिक लाभ अधिक मिल सके ऐसा।
0: बिल्कुल आप ठीक ही रहा। देखो या तो आपकी जानकारी दीदी, अब पाचा अपने किसान भाई बहना ने लोक संगीत री दुनिया में ले चला सा और हुनावा यो राजस्थानी लोकगीत सा।

0: तो अनीता भाई से यूं ही आप ही राजस्थानी लोकगीत, तो देखो कार्यक्रम में आप ही आगे बढ़ा। तो देखो आज है 16 जून
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: आज पूरा विश्व में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस सा।
1: बिल्कुल सही बात करी
0: और
1: सर।
0: 16 जून अणि दिवस मनावर उद्देश्य यो है कि वणा प्रवासी कामगार जितना भी है
1: हाँ
0: वणा योगदान ने, वणारो जो सम्मान है, वणारो योगदान ने सम्मान देनो जी कि आपने परिवार रे भरण पोषण वाते आपनो मूल देश जो है वन्ने छोड़ीन कटे विदेश में नियमित रूपों धन कमावे परा गया है
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: वटू धन भेजता रहे वैसा।
1: बिल्कुल सर। एनिवर्सरी जो थीम रही, अगर आप बात करें तो देखो मूल भावना की बात पर टिकी थी कि है कि प्रेषण एक पोषण है सा। और नो मतलब यो भी हो कि प्रवासियों द्वारा भेजो थको पैसों सिर्फ कागजी नोट या बैंक रो आंकड़ों नहीं है, बल्कि बात करें तो यो ग्रामीण परिवार जीवन रो आधार और पोषण है सा।
0: बिल्कुल आप ठीक किरियान। यो दिवस आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा 2015 में शुरू की दो गयो हो सा। और दुनिया भर में 20 करोड़ों ज्यादा लोग जो है प्रवासी कामगार है जी की एक देश छोड़ी दूसरा देश में काम कर रहा है
1: हाँ
0: और
1: सर।
0: आपने देश में आपने परिवार ने पैसा भेजे और बनो देखो बना रहे परिवार रो जो गुजारो चाले सा।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: बना
1: बात करी
0: लोगों ने
1: सर।
0: सम्मान देवा वाते यो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस हर साल 16 जून ने मनायो जावे
1: बिल्कुल
0: सा।
1: सर। तो देखो या तो आप बात की थी सा, और अभी को तो अपने किसान भाई ने एक और गीत सुने था सा बढ़िया।
0: बिल्कुल होना वैसा।

0: और आज देश बंधु चित्रंजन दास जी की पुण्यतिथि है
1: बिल्कुल
0: साहब,
1: सा, हाँ।
0: और आप एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर वकील और राजनीतिक हासा,
1: हाँ सा,
0: और अणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही ज्यादा अतुलनीय योगदान दी दो, और जनता रे प्रति वणारे समर्पण रे कारण वणा ने देश बंधु यानी कि देश रो मित्र री उपाधि भी दी दी गई साहब।
1: बिल्कुल सही बात की,
0: और अणा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी रे आह्वान पर अपनी नौकरी यानी कि वकालत भी छोड़ दी थी सा, और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़िया हा।
1: बिल्कुल सही,
0: और आज रे अणि दिवस पर आपी अणान महान देशभक्त ने याद कर रहा सा, वणा ने नमन कर रहा सा, और या तो देखो आज अपनी अणि कार्यक्रम में आपी अलग अलग विषय पे जानकारी दी थी सा, और अब आपी देखो घड़ी आड़ी देखा तो आपने चालवारो टाइम वेरो है, तो किसान भाई बहनों आज्ञा लासा, जय जवान
1: जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और घर, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ। अगला गीत तेरे नाम फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं। संगीत हिमेश रेशमिया का है।

ये काली काली आंखें। जी हाँ, ये गीत आपको सुनवा रहे हैं बाजीगर फिल्म से कुमार सानू और अनु मलिक साथियों की आवाजें हैं। संगीत अनु मलिक का है।

एक आखिरी गीत क्या कहना, इस फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाजें हैं, संगीत है राजेश रोशन का।

क्या कहना। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत फिलहाल यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत किया आपके रेडियो दोस्त चंचल ने।

0: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से सुनेंगे समाचार संध्या और उसके बाद रात्रि 9 न्यूज एट 9। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
2: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
1: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप

0: के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की पहली जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की यह पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की

0: पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि यह दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देशभर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
4: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार जेसीएम के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
7: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
8: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में चुनिंदा गजलें।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में नई फिल्मों के गाने, कार्यक्रम नई फिल्मों से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। अब सुनवा रहे हैं आपको हम गीत बार बार देखो। इस फिल्म से जसलीन रॉयल और प्रतीक खोत की आवाज़ें हैं। जसलीन रॉयल का संगीत है।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जो नई फिल्मों से आखिरी है, जिसमें फिल्म का नाम हम आपको बताएं भोला है। बी पराग की आवाज़ है, रवि बसरूर की संगीत से सजा ये गीत है।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत नई फिल्मों से यही समाप्त होता है। प्रस्तुत किया आपकी रेडियो दोस्त चंचल ने। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत में कुछ चुनिंदा मन चाहे गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम।
0: मन चाहे गीत लेकर फिर से हाजिर है आपके रेडियो दोस्त चंचल।
2: पहले आप करते निकल गई थी उस तरह हमारी, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

मन चाहे गीत आप सुन रहे हैं। अगला गीत पड़ोसन फिल्म से किशोर कुमार मन्नाडे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, महमूद की आवाज़ें हैं, आर डी बर्मन का संगीत है।

0: घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर घोड़ा चतुर एक पे रहे ना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम मरत जात अरे आय आय आय आय आय आय चतुर नार
2: बड़ी होशियार
1: करके सिंगार
2: अपने ही जाल
1: मेरे मन के द्वार
2: फंसत जात
1: ये घुसत जात
2: हम हंसत जात
1: हम मरत जात मरत जात मरत जात
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त चंचल। अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं कर्ज फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, मन चाहे गीत आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त चंचल के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं शागिर्द फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी, जोगिंदर की आवाज़ें हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

करारता मेरे हाथों तो मैं हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

मन चाहे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र के साथ। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त चंचल। अगला गीत डिस्को डांसर फिल्म से

मन चाहे गीत का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लव इन टोक्यो फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, शंकर जय किशन का संगीत है।

आइए अब सुनते हैं एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शंकर जयकिशन का संगीत है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

झुक गया आसमान। इस फिल्म का गीत आपका हम सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, संगीत है शंकर जयकिशन का।

मन चाहे गीत का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, ओपी नैयर का संगीत।

मन चाहे गीत का एक आखिरी गीत आपको हम सुनवा रहे हैं कटी पतंग फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज़ है, संगीत आर डी बर्मन ने दिया।

इस गीत के साथ ही मन चाहे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत किया आपके रेडियो दोस्त चंचल ने। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में हमारे

0: ਇਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण यहीं समाप्त होते हैं। अगली सभा के प्रसारणों के साथ कल सुबह 5:55 पर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।